مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل

0: क्या इंसान ने नहीं देखा कि हमने उसको नुतफे से पैदा किया, फिर वो तड़ाक पड़ाक झगड़ने लगा और हमारे बारे में मिसालें बयान करने लगा और अपनी पैदाइश को भूल गया। कहने लगा कि जब हड्डियां बोसीदा हो जाएंगी तो इनको कौन जिंदा करेगा? कह दो कि इनको वो जिंदा करेगा जिसने इनको पहली बार पैदा किया था और वो हर तरह की तखलीक को जानता है, वही जिसने तुम्हारे लिए सब्ज दरख्त से आग पैदा की, फिर तुम उसकी टहनियों को रगड़कर उनसे आग निकालते हो। भला जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया, क्या वो इस बात पर कादिर नहीं कि इनको फिर वैसे ही पैदा कर दे? क्यों नहीं, और वो तो सब कुछ पैदा करने वाला कामिल इल्म वाला है।
1: سبحان

وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون.

और उनको ठहराए रखो कि उनसे कुछ पूछना है। तुमको क्या हुआ कि एक दूसरे की मदद नहीं करते? असल बात यह है कि आज ये लोग अपनी गलती तस्लीम कर रहे हैं और वो एक दूसरे की तरफ रुख करके सवाल और जवाब करेंगे। पैरोकार अपने पेशवाओं से कहेंगे कि तुम ही हमारे पास दाईं तरफ से आते थे। वो कहेंगे, नहीं बल्कि तुम ही ईमान लाने वाले न थे और हमारा तुम पर कुछ जोर न था बल्कि तुम ही सरकश लोग थे। सो हमारे बारे में हमारे परवरदिगार की बात पूरी हो गई कि अब हम अजाब के मजे चखेंगे।

हाँ अल्लाह के चुने हुए बंदों का अंजाम बहुत अच्छा होता है। और हमको नूह ने पुकारा सो देख लो कि हम दुआ को कैसे अच्छे कबूल करने वाले हैं, और हमने उनको और उनके घर वालों को बड़ी मुसीबत से नजात दी, और उनकी औलाद ही को हमने बाकी रहने वाला बना दिया, और हमने पीछे आने वालों में उनका जिक्र जमील बाकी रखा, यानी तमाम जहानों में कि नूह पर सलाम हो। नेकुकारों को हम ऐसा ही बदला दिया करते हैं, बेशक वो हमारे मोमिन बंदों में से थे।

0: बख्शिश मांगो अपने रब से।
1: अजरक के रंगों से रंगी,
2: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
3: सिंध के दिल से निकली आवाज,
2: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: It's 9 a.m. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: Sona sirf zevar nahi har ghar ki amanat hoti hai, isiliye Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla sharia compliant gold based financing jisse mile 50 lakh rupaye tak ki financing 4 saal tak ki muddat ke saath. Bank Islami gold based financing se अमानत को अपनी जगह रहने दो. आज ही 111-475-264 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें. शरायत जवाबित लागू हैं.
3: जिते ढोर इंसान जी खुशहाली जो जरियो आहन उते सुठी खुराक ढोरन जी जरूरत आहे.
4: जी जा ढोर चारो मसालो हाजमेदार वधाए खीर ए गोश्त जी पैदावार 50 सालन खा आजमायल सखरवारन जो जी जा ढोर चारो मसालो हर 5 साल ए जानवरन जे डॉक्टरन खा नालो वठी तलब कंदा.
5: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है. सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है. अब जिम्मेदारी हम सब की है. हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं. पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी.
6: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था, पर पोलियो इन्हन कदमन के रोके भी सके थो. इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ए पेंजे बारन के पोलियो खां बचाओ जब कतरा जरूर प्यारियो. छो त ये कतरा बारन में मुदाफती ताकत के वधाइन था ए इन्हन जे ख्वाबन के उड़ाम देन था. पोलियो मतलब जिंदगी भर जी माजूरी.
7: माशाल्लाह फौजी पाइप फैक्ट्री नर्स गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर असा वट जगह जो डारियो जगह जा पावा आई पाइप डेढ़ ब चार छह नव आई बारह इंच में प्लेन आई कॉलम में मौजूद आहिन. फौजी बायरन लाए खसूसी रियायत हुंदी. राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-456
8: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल. अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे बाजू टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट. बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज. अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ. आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569.
9: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर. होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर 9

और मेरे साथ तो अच्छा नहीं किया जा रहा, लेकिन वो कभी ये नहीं देखते कि मेरे में और मेरे भाई में दरअसल फर्क क्या है। वालदैन उससे ज्यादा मोहब्बत क्यों करते हैं, उसको दुआएं क्यों देते और मुझे क्यों नहीं देते? मेरे अंदर भी कोई कसूर हो सकता है। लेकिन अमूमन शैतान हमें हमारी गलती नहीं देखने देता, और इसके बरक्स हमें क्या सुझाता रहता है, दिल पैदा करता है और ये सुझाता है कि नहीं, तुमसे तो मां बाप बिल्कुल मोहब्बत नहीं करते, बिल्कुल

0: वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नजलो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहरापुर 03003385 69

0: इन्हनि खे प्रिज़र्व रखियो वञे हा, तारीख़ खे हमेशह प्रिज़र्व रखियो वेंदो आहे। जेके सुजाग रोशन ख़्याल क़ौमूं हूंदियूं आहिनि उहे पंहिंजी तारीख़ खे मेसारण न ॾींदियूं आहिनि। ईअं खोड़ सारा असांजे आस पास मकबरा बि आहिनि, ॿिया बि खोड़ सारा आहिनि जिन जी सार संभाल लहणु खपे ऐं उन्हनि खे पंहिंजी ओरिजिनल सूरत में रहणु ॾिनो वञे। मिसाल जेकॾहिं असां हाणे तव्हां अॼु बि जेकॾहिं ॾिसंदो वञी असांजे लाड़काणे जो ताजमहल चवंदा आहिनि उनखे, कलेक्ट्रेट जेका बिल्डिंग आहे, हाणे कलेक्ट्रेट बिल्डिंग या कलेक्ट्रेट बिल्डिंग जे साम्हूं उहा बाद में ठही ख़ासि तौर ते जेका कोर्ट आहे, पर उन कलेक्ट्रेट बिल्डिंग खे पंहिंजे ओरिजिनल शेप में न रखियो वियो आहे। जदीद क़िस्म जूं शयूं उनमें जेके लॻायूं वियूं आहिनि उहो उन ज़ाहिर आहे त उनजी ओरिजिनलिटीअ खे मुतासिर कयो आहे। हिकिड़ो बंगलो आहे जिते कोर्ट बि हलंदी हुई कंहिं दौर में, ऐं उहो सेशन जज हूंदो हुयो, उहो हिन वक़्तु बि मौजूदु आहे। जेको तव्हांजो रज़ा शाह कबीर रोड आहे, हिन खां अंदरि जेको रिहाइश आहे जजनि जी, उहो बि तारीख़ी बंगलो आहे। उनजी बि उहो बि अंग्रेज़नि जे पहिरें दौर जो बंगलो आहे, यानी 1800। सो ईअं केतिरियूं ई लाड़काणे जे अंदरि ॿियूं बि इमारतूं आहिनि जिन खे प्रिज़र्व कयो वञे, जिन जी हिफ़ाज़त कई वञे, ऐं जिन खे ओरिजिनल उन ई सूरत में, यानी हिकिड़ो आम कारीगरनि खां न, पर जॾहिं हेरिटेज तौर उहे जेके आहिनि हिकिड़ा पंहिंजो असांजे ज़ाहिरा डिस्ट्रिक्ट जेके जा ऑफिसर आहिनि उन जी तरफ़ां जेकॾहिं कोशिशूं वरितियूं वेंदियूं ऐं उनखे सकाफ़ती विरसो जेकॾहिं करे डिक्लेयर कयो थो वञे, त पोइ ज़ाहिर आहे हिन ते प्रॉपर तरीक़े सां इन्हनि इमारतुनि ते कमु थींदो ऐं थियण बि खपे।
1: जी ॾिसो, हिन वक़्त असांजो जेको हेरिटेज कमेटी आहे उनजो हिकिड़ो एडवाइज़री रोल आहे सिर्फ़, त गवर्नमेंट खे एडवाइज़ करे ॿुधाए त हे हे शयूं जेके आहिनि असांजूं जेका सो तारीख़ी आहिनि। लास्ट टाइम मां जॾहिं हिते आयो हुयुसि त असां जेके ॿई टावर्स आहिनि, सुकानो टावर ऐं अतातुर्क टावर, इन्हनि लाइ लिखियो हुयो गवर्नमेंट खे त इन्हनि खे हेरिटेज डिक्लेयर कयो वञे, इन्हनि जी हिकिड़ी प्रॉपर मेंटेनेंस कई वञे। गॾो गॾु असां हिन कलेक्टोरेट बिल्डिंग्स जो बि लिखियो हुयो। हाणे गवर्नमेंट जो कमु आहे त उन्हनि एडवाइस ते, उन्हनि मशवरनि ते, जेको असांजो रोल आहे असां करे चुका आहियूं अॻ में, उन्हनि ते अमल करे ऐं जेको आहे सो हिननि खे हिकिड़ी ओनरशिप करे ऐं जेको आहे सो मेंटेन करे त हिन शहरनि जे लाइ, हिन सूबे जे लाइ हिकिड़ो तारीख़ी जेके बि शयूं आहिनि, असांजी इमारतूं आहिनि, मॉन्यूमेंट्स आहिनि या पार्क आहिनि, उहे मेंटेन थी वेंदा। पार्क जे हिसाब सां असांजो जेको बिलावल साहिबु आहे पंहिंजो, हुन में काफ़ी कंसर्न बि आहे ऐं हिन बजट में हिदायत बि कयूं अथनि असांखे त जेके बि असांजा पार्क आहिनि उन्हनि खे मेंटेन करणो आहे, उन्हनि खे वरी रेनोवेट करणो आहे। इहा
2: हक़ीक़त आहे त लाड़काण हिकु तारीख़ आहे, पर लाड़काण जूं जेके तारीख़ी इमारतूं आहिनि, जेके असासो आहिनि ऐं लाड़काणी सुञाणप मिलियल आहिनि, उन्हनि इमारतनि जी नरगो संभाल थी वञे, पर उन्हनि जी मरमत कराए साॻे शेप में आंदो वञे, त जीअं ईंदड़ नसल खे बि ॼाण हासिल थिए त सिंध जा माण्हू हुकमरान पंहिंजी तारीख़ी शयुनि जी संभाल रखनि था। कैमरामैन अल्ताफ़ फार सां गॾु हनीफ़ सुहाग, KTN News, लाड़काणा।

0: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाक़ी तमाम पखनि जे मुक़ाबले में ते ज़बरदस्त हवा। रॉयल इनवर्टर फैंस, साथ ज़िंदगी भर का।
1: दिस प्रोग्राम इज़ ब्रॉट टू यू बाय
2: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
3: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरा पर राब्ते जे लाइ 03201800003।

0: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था, पर पोलियो इन्हन कदमन के रोके भी सके थो। इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ए पेंजे बारन के पोलियो खां बचाओ जब कतरा जरूर प्यारियो, छो त ये कतरा बारन में मुदाफती ताकत के वधाइन था ए इन्हन जे ख्वाबन के उड़ाम देन था। पोलियो मतलब जिंदगी भर जी माजूरी।
1: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे झुर्रियां और की महासे फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर, 03000-310-5109, 03000-310-5109।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 03000-338-5569।

0: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चौक पर एतमाद, अम्बा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कर रेट दे दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई 03073592120।
1: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर 03008569।
2: अपना शहर अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

0: रोशनी का काफिला, मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद रابطے के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम, 03000027234, निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए, घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें। रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर सूमर।

0: थ्री मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन के कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
2: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई
1: हाँ अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
2: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372
3: अस्सलाम वालेकुम अदा
4: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
3: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
4: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
3: न अदा
1: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
3: मुझे दुकान जी बेड हरंदी
4: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
3: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
1: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी FM 94

0: सिक्योरिटी फोर्सेस जो बलोचिस्तान के इलाके में कार्रवाई 11 दहशतगर्द मारजी वया। सिक्योरिटी जरियन मूजिब पंजोड़ ए चागी में कार्रवाई दौरान 11 दहशतगर्द मारजी वया। चागी में कार्रवाई दौरान 6 ए पंजोड़ में 5 दहशतगर्द मारजी वया। दहशतगर्दन के कब्जे में वडी अंग में हथियार।
1: असीं नथा चाहियूं त पीटीआई खे इस्लामाबाद अचण ते कन पकड़े समझायूं। मुल्क जी वज़ीर तलाक चौधरी चयो आहे त 27 सितंबर ते ख़बर पइजी वेंदी त रियासत पंहिंजे रिट कीअं क़ाइमु करे थी। केपी के हुकूमत पहिरियां एफएनसी तहत मिलंदड़ 700 अरब रुपियनि जो जवाब ॾे।
0: हुसैन जो हमलनि जो खतरो सऊदी अरब अलर्ट जारी करे छॾियो। सऊदी सिविल डिफेंस हुसैन जे इम्कानी हमलनि खे ॾिसंदे सऊदीअ जे राजधानी रियाज अल खारिज में अलर्ट जारी करे छॾियो।
1: ट्रंप सीएनएन समेत टिनि वॾनि इदारनि जे नुमाइंदनि जे व्हाइट हाउस में दाख़िला ते पाबंदी लॻाए छॾी। अमेरिकी सदर चयो आहे त उहे इदारा मुंहिंजे इंतिज़ामिया ख़िलाफ़ कूड़ियूं ख़बरूं पिया पखेड़नि। वधीक मीडिया इदारनि ते बि पाबंदी लॻी सघे थी।
0: खेरपुर में सिंध जे इम्कानी विरांगे खिलाफ़ वकीलनि पारां अदालती कार्रवाई जो बाइकाट एहतजाज बि कयो वियो। डिस्ट्रिक्ट बार खेरपुर जे वकीलनि जो चवण आहे त सिंध जो विरांगो कंहिं बि सूरत में क़बूल न आहे। साज़िश कंदड़नि खे मात ॾिनी वेंदी।
1: मेहर में शहरनि जो बुनियादी सहूलियतनि जी खोट खिलाफ़ पियादल मार्च करे एहतजाजी मुज़ाहिरो। अॻवाड़नि चयो आहे त बिलावल कॉलोनी, हमदम कॉलोनी ऐं एजाज कॉलोनी में बुनियादी सहूलियतनि जी खोट आहे। न गिटियूं ठहियूं आहिनि, न ई पीअण जो पाणी आहे। सफ़ाई बि नथी कराई वञे, मसला हल कया वञनि।
0: कंदकोट में ज़रई ज़मीन मां हिसो न ॾियण तां पीउ खे क़तल कंदड़ जवाबदार गिरफ़्तार। पुलिस जो चवण आहे त जवाबदार ॾोह जो एतिराफ़ करे वरितो आहे। वधीक जांच कई पई वञे।

0: बख्शापुर में इंडस हाईवे ते वेन जो टक्कर लगण सबब अठन वरन जो नींगर फोत काठी पुल वट वेन जो टक्कर लगण सबब मोहम्मद मुराद पुटो गाणो हयाती विञाए वेठो पुलिस वेन ड्राइवर के गिरफ्तार करे वरतो नींगर जो मड़ अस्पताल मुंतकिल शाशरो में बरसात दौरान विज किरण सबब गरीब धनार जो 14 बकरी मरी वयूं गोड़ कीता बजीर में विज किरण सबब मुबारक बजीर जो 14 बकरी मरी वयूं।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मेरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई
2: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर नज बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
3: राबते लाए प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 02424601000।
4: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 03201800003।
5: खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ अब फिकर छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर 3 स्टाफ की निगरानी में की जाती है आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरा 555

0: अस्सलाम वालेकुम अदा।
1: वाह मदा छो परेशान आई।
0: मन खोलियो त
1: दा दुकान जी।
2: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी में हले तराई कारोबार है जो
1: कारोबारी इश्तेहारात आम इतला मिलाद
2: मदी 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालत।

खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385699।

मुंहिंजा वेठा साईं, तव्हां असांजे शो में शामिल थी सघो था बज़रिए SMS. SMS करण जो तरीक़ेकार सवलो आहे, आसान आहे. पंहिंजे मोबाइल फोन जे राइट मैसेज ऑप्शन में हलिया वञो, MRO लिखो, स्पेस ॾियो, स्पेस खां पोइ लिखो पंहिंजो नालो, पंहिंजे ॻोठ ऐं शहर जो नालो, ऐं लिखी करे मोकिलियो असां 888 ते. त मुंहिंजी प्ले लिस्ट में हिकिड़ो ॾाढो ज़बरदस्त सॉन्ग आहे, मुमताज़ मौलाई जी आवाज़ में आहे, अचो त उनखे इंजॉय कयूं. ऐं उन खां पोइ जेके तव्हांजा मोकिलियल मैसेजिस आहिनि उन्हनि खे बि पढ़ंदासीं ऐं तव्हांखे प्रोग्राम में शामिलु कंदासीं.

0: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चौपर एतमाद, अइमा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कर रेट दे दस्तियाब है, सर्विस सेंटर, एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे, होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स, खुसूसी रियायत ते मौजूद, आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो, कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिला आसिम हुसैन आराई 03073592120
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा?
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो, मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
2: मुझे दुकान जी बेड हरंदी?
3: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
3: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
5: 03013992836।
6: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर, और मेहराबपुर की आवाज जी FM 94।

कोशिश इहा पकी पकी आहे त तव्हांखे मां इहो सॉन्ग ॿुधायां ऐं छो जो ॾाढो सुठो सॉन्ग आहे, मूंखे पाण पसंदि हूंदो आहे। ऐं अॼु वरी जेको तव्हां यादि ॾियारियो आहे त जंहिं वक़्तु में फरदाना परवीन पंहिंजे पीक टाइम ते सिंगिंग कंदी हुई, ॻाईंदी हुई न, त उन वक़्तु में इहे सॉन्ग हुननि जा तमामु घणा असां ॿुधंदा हुआसीं। वाह, घरनि में, रक्षनि में, ट्रैक्टरनि में, FM रेडियो ते, ऐं बसुनि में, गाॾियुनि में, जेॾे सफ़र कयूं फरदाना परवीन जो आवाज़ु आहे ई आहे, आहे ई आहे, ॿुधंदा रहंदा हुआसीं। त अहिड़े क़िस्म जो सॉन्ग बि उन वक़्त जो ॻायल आहे, मिठो अंगूर आहे मुंहिंजो जानी। त उमेदु इहा ई आहे त तव्हांखे मां हिन ई जेको आहे न कमर्शियल ब्रेक खां अॻु में ई इहो सॉन्ग ॿुधाए वठां। बरहाल इहो आहे त असां वटि टाइम जी तमामु घणी हिकिड़ी शॉर्टेज हूंदी आहे, इन जे करे पोइ वक़्त ते सॉन्ग्स न हली सघंदा आहिनि। उन जे लाइ बि दोस्तनि खां असां माज़रत बि कंदा आहियूं, जंहिं दोस्तनि जा सॉन्ग्स रहिजी वेंदा आहिनि ऐं उहे हमेशह चवंदा आहिनि त साईं असांजा सॉन्ग अलाए छो कोन हलिया। त उन जो सबबु इहो ई हूंदो आहे त टाइम तमामु घणो घटि हूंदो आहे, विच ते कमर्शियल ब्रेक्स बि हूंदा आहिनि ऐं कमर्शियल ब्रेक खे बि मुंहुं ॾियणो हूंदो आहे। तव्हांजी पसंदि जा जेके सॉन्ग्स हूंदा आहिनि उन्हनि खे बि जेको आहे मद्देनज़र रखे करे ऐं प्रोग्राम में हलाइणो पवंदो आहे। ऐं तव्हांखे मां इहो बि ॿुधाईंदो हलां त असांजो जेको कोशिशि हूंदी आहे न उहा इहा ई हूंदी आहे त असां जेके बि असांजा प्यारा प्यारा लिसनर्स आहिनि उन्हनि सभिनी खे उन्हनि जे पसंदि जा सॉन्ग ज़रूरु ॿुधायूं।

दिलड़ियुनि जो चोर आहे मुंहिंजो जानी, मिठो अंगूर आहे मुंहिंजो जानी। त फरदाना परवीन जो ख़ूबसूरत आवाज़ ऐं तव्हांजो सुंदर समाधो त मुंहिंजा मिठा साईं, अव्हां बि पंहिंजे पसंदि जो गीत ॿुधण लाइ असांखे मैसेज मोकिले सघो था, जंहिंमें तव्हां पंहिंजो नालो लिखंदा, पंहिंजे शहर जो नालो लिखंदा ऐं पंहिंजे पसंदि जो गीत लिखी करे असां ॾांहुं मोकिलींदा। तव्हांखे असां उहो ज़रूरु ॿुधाईंदासीं ऐं उहो मैसेज असांजे लाइ तव्हांजो मोकिलियल मुहबत जो इज़हार हूंदो। असां सां ॻंढियल रहो ऐं पंहिंजे पसंदि जे गीतनि सां प्रोग्राम खे वधीक अञा ख़ूबसूरत बणाईंदा रहो ऐं मैसेज कंदा रहो ऐं पंहिंजे पसंदि जा गीत बि असां सां ॿुधंदा रहो। त शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो बि वक़्तु थियण वारो आहे, त शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जी तरफ़ हलंदासीं, उनखां पोइ वापसि ईंदासीं, शामिल कंदासीं तव्हांजा प्यारा प्यारा मैसेज ऐं उनखां पोइ अदा शमन अली मीराली जे कलाम जी फरमाइश कई आहे, त ब्रेक खां पोइ शमन अली मीराली जो कलाम इनशाला ज़रूरु।

0: 11:45 AM. This time check is brought to you by
1: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: Har baar ja nandra kadam ik nayi duniya da vadhan ta, par polio inan kadman ke roke bhi sage tho. Inhiye kare jadhein bhi polio muhim dauran polio workeran ji dastak the ta dar kholyo ऐं पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो खां बचाओ जा ॿ कतरा ज़रूर पीआरियो, छो त इहे कतरा ॿारनि में मुदाफ़ती ताक़त खे वधाइनि था ऐं इन्हनि जे ख़्वाबनि खे उॾाम ॾियनि था। पोलियो मतिलब ज़िंदगी भर जी माज़ूरी।
3: छा अव्हां अछनि वारनि खां परेशान आहियो? पेश आहे आर्च क्रीम हेयर कलर। पंहिंजे पसंदीदा रंग सां पंहिंजो अंदाज बणायो वधीक दिलकश ऐं वधीक स्टाइलिश। पार्टी हुजे, ऑफिस हुजे या के ख़ास मौके जी तयारी, हर लम्हे पंहिंजो बहितरीन अंदाज ज़ाहिर करियो आर्च क्रीम हेयर कलर सां। पंहिंजी शख़्सियत में आणियो नओ रंग, नओ अंदाज ऐं नई ताज़गी। अॼु ई पंहिंजे वेझे स्टोर तां आर्च क्रीम हेयर कलर हासिल करियो ऐं पंहिंजी खूबसूरती खे ॾियो नओं रंग। आर्च क्रीम हेयर कलर, हर रंग में खूबसूरती, हर अंदाज़ में एतमाद। ज़िंदगी गुज़ारियो एतमाद सां, क़ुरान खे समझी ॿुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल क़ुरान रोज़ानो सुबुह 7:30 ते सिर्फ़ GFM 88 नेटवर्क ते।
4: This program is brought to you by
1: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
5: Sindh ki ho to aawaz bhi Sindh ki hai. GFM 88 network. Sindh ki aawaz.

0: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चौक पर एतमाद मां अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई 03073592120।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड PRP ट्रीटमेंट के साथ। बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385569। खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे बाजू टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर

0: जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहराब पर 03003385569। खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो, जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार, फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385569।
1: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया दा वधन था, पर पोलियो इनन कदमन के रोके भी सके थो। इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ऐं पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो खां बचाओ जा ॿ कतरा ज़रूर पीआरियो, छो त इहे कतरा ॿारनि में मुदाफ़ती ताक़त खे वधाइनि था ऐं इन्हनि जे ख़्वाबनि खे उॾाम ॾियनि था। पोलियो मतलब ज़िंदगी भर जी माज़ूरी।
2: सोना सिर्फ ज़ेवर नहीं, हर घर की अमानत होती है, इसीलिए बैंक इस्लामी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कम्प्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग, जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ। बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो। आज ही 111-475-264 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें। शराइत व ज़वाबित लागू हैं।

0: मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी माहिर अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभी बीमारन जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाए 0301-9196-851।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा?
0: यार आजी कल शहरन तोड़े गोठन में जीए मेरा पर एफएम 94 ही हले थो। मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
0: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर। राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347।
3: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज जीए एफएम 94।

0: It's 12:45 PM. This time check is brought to you by
1: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है. सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है. अब जिम्मेदारी हम सब की है. हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं. पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी.
3: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
1: बैंक इस्लाम ने लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग.
4: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है. सुनते रहो जी FM 94.

असांजे लाइ बि दुआ कजो, असां अव्हां जे लाइ दुआ कंदासीं। ऐं उनखां अलावा जेको तव्हां मैसेज कंदा आहियो न, उहो मैसेज वारो नंबर बि गुम थी वियो अथव मुंहिंजा मिठा साईं मूंखां। बहरहाल महिरबानी आहे मुंहिंजा प्यारा, तव्हां असांजे शो में शामिल थिया। लख कुर्ब लख एहसान अदा जन मुनवर मौलाई जी कलाम जी फरमाइश कई आहे। मुनवर मौलाई जो कलाम प्रोग्राम जो वक़्तु हींअर ख़तमु थियण वारो आहे। नेक्स्ट सैटरडे ते तव्हांखे ज़रूरु ॿुधाइबो, इहो तव्हां सां वाइदो हूंदो, पर शर्त इहो हूंदो त तव्हां असांखे मैसेज कंदा, छो जो मूंखां यादि बि विसरी वेंदी अथव। त असां सां गॾु आहे प्यारो भाउ चवे थो, अस्सलाम वालेकुम, अदा आप को और एफएम की टीम को अल्लाह पाक खुश रखे, आमीन सुमा आमीन। अदा अल्लाह साईं वालेकुम असलाम, ऐं अल्लाह साईं तव्हांखे बि ख़ुशि रखे, आबाद हुजो। असांजूं दुआऊं तव्हां सां गॾु आहिनि हमेशह हमेशह जे लाइ, सिर्फ़ु तव्हां सां न बल्कि जेके बि असांजा लिसनर्स आहिनि उन सभिनी सां असांजूं दुआऊं गॾु आहिनि। ऐं अदा गुलाब लगारी शहर आहे, उनजे भरमी आहे ॿियो ॻोठु। अच्छा, ॻोठु जेको आहे उनजो नालो आहे बिशाम ख़ान रिंद, ऐं उतां शाइरु आहे गाज़ी ख़ान रिंद। अदा कहिड़ी शाइरी हिनमहिल थोरी कई अथई मुंहिंजा मिठा साईं, थोरी शाइरी बि लिखी मैसेज में मोकिली थो करणु, तुंहिंजी शाइरी मां पंहिंजे प्रोग्राम में शामिलु कयां। उन सां गॾु आहे रिज़वान अली रिंद, फैज़ान अली रिंद, शहज़ाद अली रिंद, ऐं नंढड़ी आहे कोनैन ज़हरा। ऐं चए थो, आपका शो सुन रहा हूं, शो लाजवाब है। ऐं हमीद अंसारी जी कलाम जी अदा जन फरमाइश कई आहे त मुंहिंजा मिठा साईं हाज़ुर, तव्हांखे बि तव्हांजे पसंदि जो सॉन्ग असां ज़रूरु ॿुधाईंदासीं, पर नेक्स्ट शो में, छो जो हींअर वक़्तु प्रोग्राम जो थी चुको आहे तक़रीबन पूरो। ऐं इन खां गॾोगॾु असांजे प्रोग्राम में शामिलु आहे जाम ख़ान बबर, अब्दुल रशीद बबर ऐं फरज़ाना परवीन जी कलाम जी मुंहिंजनि भाइरनि फरमाइश कई आहे त मुंहिंजा मिठा साईं फरज़ाना परवीन जो कलाम मूं प्रोग्राम में हिकु दफ़ो हलाए चुको आहियां। इनशा नेक्स्ट प्रोग्राम में तव्हांखे ज़रूरु तव्हांजे पसंदि जो सॉन्ग ॿुधाईंदुसि। त मुंहिंजा मिठा साईं, वक़्तु कंहिं लाइ बि नथो बीहेव, ऐं अॼु जी हिन ख़ूबसूरत महफ़िल जो सफ़र बि हाणे पहुतो आहे पंहिंजी पुॼाणीअ ते। अव्हांजो साथ, अव्हांजा मैसेज ऐं अव्हांजी मुहबत हिन प्रोग्राम जी असल ख़ूबसूरती आहिनि। उमेदु आहे त अॼु जा गीत, ॻाल्हियूं ऐं चंद घड़ियूं अव्हांजे दिलि खे ज़रूरु वणियूं हूंदियूं। त ॿिए प्रोग्राम ते पंहिंजे मेज़बान गुलाब खान भेण खे ॾींदा इजाज़त, पर हीअ इजाज़त रुॻो अॼु लाइ आहे। मोहबत जो हीउ रिश्तो ईंदड़ प्रोग्राम ताईं बि क़ाइमु रहंदो, ऐं पंहिंजे रेडियो खे ॿुधंदा रहो, ऐं पंहिंजो प्यार ऐं मैसेज असां ॾे मोकिलींदा रहो। जिते बि रहो, ख़ुशि रहो, मुस्कराईंदा रहो, ऐं पंहिंजनि प्यारनि जो ख़्यालु रखंदा रहो। ईंदड़ मुलाक़ात ताईं मूंखे ॾींदा इजाज़त, त अलह वाही अलह निगहबान।

खेबर पख्तूनख्वा के इलाके कोहाट में बम धमाके में मुलविस समूरा दहशतगर्द मारिजी विया। सिक्योरिटी फोर्सेस इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन मुकमल करे वरतो। सिक्योरिटी जरियन मूजिब पुलिस लाइन में लिकल बिन आपघाती बमबारन के भी मारियो आए। कार्रवाई दौरान मजमूई तौर से 7 दहशतगर्द मारिया विया। कमांडर्स ए बम डिस्पोजल स्क्वाड इलाके के क्लियर करार दई छो। ऑपरेशन की निगरानी जनरल ऑफिसर कमांडेंट कोहाट कई।

0: अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप रूस ऐं ईरान ते पाबंदियूं मरण वारे बिल्स ते सहियूं करे छॾियूं। ट्रंप पारां बिल्स ते सहन बाद ईरान ते लागू पाबंदियुनि जो मुदो वधी वियो। रूस ते नयूं पाबंदियूं लागू थी वयूं। रूस जे पाबंदियुनि हेठि आयल शोबनि में तवानाई ऐं वापार वारियूं शयूं बि शामिल।
1: ट्रंप CNN समेत मीडिया के टिन इदारन ते व्हाइट हाउस में दाखिला ते पाबंदी लगाए छी। पाबंदी हेठ आयल इदारन में MS नाउ ए पॉलिटिकल नाले खबरू इदारे भी शामिल आहिनि। समाज वेबसाइट ते जारी कयल बयान में सदर ट्रंप चयो आहे त टई इदारा लगातार इंतज़ाम ख़िलाफ़ कूड़ियूं ऐं ख़याली ख़बरूं हलाए रहिया आहिनि।
0: सिंध बार काउंसिल जे सॾु ते सिंध इम्कानी विरहाङे ख़िलाफ़ वकीलनि जा मुख़्तलिफ़ शहरनि में मुज़ाहिरा। खैरपुर ऐं रोहड़ी में वकीलनि अदालती कार्रवाइयुनि जो बाइकाट करे मुज़ाहिरा कया। वकीलनि जो चवणु आहे त सिंध जो विरहाङो कंहिं बि सूरत में क़बूल न आहे। साज़िश कंदड़नि खे मात ॾिनी वेंदी।
1: चक जे कारे तकरार तां जतोई धुरन में जेड़ो हिकु ॼणो क़तल। औरत समेत ॿ ॼणा ज़ख़्मी। घर पांजा वारे इलाइक़े में पुराणे तकरार तां कं जतोई बिरादरीअ जे ॿिनि धुरनि में जेड़ो थियो। फायरिंग जे नतीजे में दो जतोई मारिजी वियो। लाश इस्पताल मुंतकिल। धुरनि में तकरार तेज़ थी वियो।
0: मेहड़ में शहरनि जो बुनियादी सहूलियतनि जे खोट ख़िलाफ़ प्यादल मार्च। बिलावल कॉलोनी, हमदम कॉलोनी ऐं एजाज़ कॉलोनी में बुनियादी सहूलियतनि जे खोट ख़िलाफ़ एहतजाज कयो वियो। मुज़ाहिरीन चयो त टिनी कॉलोनीज़ में न घिटियूं ठहियूं आहिनि, न ई पीअण जो पाणी आहे। सफ़ाई बि नथी कराई वञे। मसला हल कया वञनि।

0: रनरो आदम वेझो कुकड़िन जे फार्म ते कम कंदड़ पोरियत पुरसरार नमूने फौत वारसन पारां कतल जो शक ज़ाहिर। गोठ इब्राहिम खासकेली वासी 35 सालनि जो मुराद पुट अंबर खासकेली पुरसरार नमूने फौत थी वियो। फौतीअ जे भाउ चयो आहे त भाउ खे ज़हरीली शइ खाराए क़तल कयो वियो आहे, शफ़ाफ़ जाच कराई वञे।
1: खानपुर में यूथ एसोसिएशन के सर ते वधंदड़ बदमनी ए भत्ताखोरी खिलाफ रैली ए धरणो। शहरी ईदगाह का उर्दू स्कूल ताई रैली कढ़ी धरणो हयो। अगवान चयो आहे त पुलिस की नाहेली सबब खानपुर शहर भरपासे में बदमनी चोर चढ़ियल आहे। पुलिस की सरपरस्ती में मंशा जो विक्रो जुआ जा अडा ए ब्याज हली रहो आहे। नोटिस वरतो वञे।
0: भिरिया सिटी भरसां पसंद जे शादीअ तां नौजवान जे घर ते मुबैना हमिलो। फायरिंग में संदसि ज़ाल ज़ख़्मी। ॻोठ अली ख़ान सोलंकीअ में हथियारबंदनि मुबैना तौरु अल्ताफ सोलंकीअ जे घर ते का कई। जवाबदारनि नारी आसद सोलंकीअ खे गोलियूं हणी ज़ख़्मी कयो। मुतासिरनि चयो त 5 हथियारबंदनि फायरिंग करे घरवारीअ खे ज़ख़्मी कयो आहे।

0: कंदकोट में ज़रई ज़मीन मां हिसो न ॾियण तां पीउ खे कंदल कंदड़ जवाबदार गिरफ़्तार। पुलिस चयो आहे त जवाबदार।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 03201800003।
3: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 03003385 69।
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर। एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए, जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स। एड्रेस, इंडस बाईपास नज़्द रेलवे लाइन मेहरापुर। राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 03073592120।

कालम में मौजूद आहिन। फौजी भाइरन लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राबते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301 54 4 56 ऐं तौकीर अहमद 0306।

सिंध की आवाज। तुम्हारी उम्मीद माजिज़ों के बादशाह से है, तुम्हारी उम्मीद माजिज़ों के बादशाह से है, फिर क्यों परेशान हो, तुम्हारे पास तो अल्लाह है। सुनिए तमाम खूबसूरत मासूम ही सुने समात उनके मुझे तरफा अस्सलाम वालेकुम। पुरखलू दुआओं के समंदर, चाहत की बारिश और आसवल खजानों के साथ दुआ है पल से पल तक, आज से कल तक, सुबह से शाम तक, दिन से रात तक, नींद से जागते समय से आसमां तक, जिंदगी से मौत तक, सांस से तार तक, हमसे खुशी तक, दिल से दिल तक, जिंदगी के पहले दिन से जिंदगी के आखिरी दिन तक, अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको हमेशा हमेशा हमेशा अपनी रहमत और बरकतों के साए में सलामत रखे, तो आमीन या रब्बुल आलमीन। बिल्कुल जी, आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मादली नूरियाबाद और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं व्हाइट इश एंड डी इज ब्यूटी शो। बिल्कुल जनाब, सो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के दावन से प्रोग्राम आप लोगों तक नशर किया जा रहा है। डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बातें की जाएंगी और जनाब आप लोगों को बताया जाएगा कि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल आपकी स्किन के लिए, आपकी जिल्द के लिए और आपके लिए कितना ज्यादा और क्यों जरूरी है। तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए मौजूद है जनाब डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन फेस वॉश, जो कि आप इस्तेमाल करके अपनी खूबसूरती में ना सिर्फ इजाफा ला सकते हैं बल्कि अपनी खूबसूरती की हिफाजत भी कर सकते हैं, क्योंकि खूबसूरत रहना और खूबसूरती की हिफाजत करना दोनों चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। तो अगर आप भी हसीन बनना चाहते हैं, खूबसूरत दिखना चाहते हैं, पुरकशिश बनना चाहते हैं, तो बिल्कुल सही जगह पर मौजूद है। इस प्रोग्राम में आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा वाली बातें होंगी, आप लोगों को गाने सुनाए जाएंगे, आप लोगों के साथ मजे किए जाएंगे और जनाब एंटरटेनमेंट का फुल वाला डोज दिया जाएगा, जो कि साथ की अगर बात की जाए तो साथ रहेगा ठीक अब से लेकर पूरे पूरे 3 बजे तक, मैं आपके साथ, आप हमारे साथ। बिल्कुल जी, तो आपको वेलकम इन खुशामदीद कहा जाता है, आपकी मोहब्बत और समात और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया और साथ ही साथ जरा अपने हाल चाल बताते जाइए। सो डियर लिसनर्स, अंत की फहालत कैसे ही आपकी हालत, उम्मीद अन शदीदन के बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, सुबकुल मूड के साथ सुबकुल प्रोग्राम का इंतजार करे होंगे। तो आपके जो इंतजार की घड़ियां थी वो खत्म हो चुकी है, फाइनली यहाँ पर हमने एंट्रियां मार ही ली है। आपको पता है जब हम एंट्रियां मारते हैं तो बहुत सारे लोगों के दिलों में घंटियां बजाते हैं, तो यकीनन आपके दिलों में भी घंटियां बजाएंगे और आपको बताएंगे कि आपका हमारा साथ पूरे 2 घंटों का, पूरे 2 घंटों में हम आप लोगों के साथ करने वाले हैं इन्नी शाली बातें। और इसी के साथ साथ जरा अपना भी तारीफ करवाते हैं, सो लिसनर्स प्रेजेंटिंग द मोस्ट ब्यूटीफुल फैंटास्टिक इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग कैरेक्टर योर आरजे एंड योर डीजे सिद्रा मुस्कान, नाम तो सुनाई होगा। और यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे साथ ऐसे मौजूद होते हैं जो अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं, बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए यानी कि फ्री होकर हमारा इंतजार कर रहे थे, ऐसी बहुत सारी आंटियां अमियाएं खालाएं बाजियां और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी यानी कि लंच बनाने के दौरान। सो भाई अपने काम भी कीजिए, हमें भी सुनिए, आपको कहेंगे वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुनी लिए हैं तो जनाब अब जबरदस्ती गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए, क्योंकि आपके होंठों पर 440 और की समा लाने का काम करेगी भाई जानिए सिद्रा। तो बिल्कुल आपके होंठों पर 440 उल की स्माइल लाते हैं और यहाँ पर ऐसा करते हैं आगाज से प्रोग्राम कर लेते हैं। हाँ जी बिल्कुल, आगाज से प्रोग्राम किया जाएगा और प्रोग्राम में आगाज के फौरन बाद ही जैसे ही वापस आप लोगों के पास मुखातिब होंगे तो बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में क्या होने वाला है। सो आप सुन रहे हैं व्हाइट इश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आपकी खूबसूरती के लिए बहुत ज्यादा जरूरी। तो आइए जी एक बहुत प्यारा सा जरा कलाम एंजॉय करते हैं, तो साथ रहिए और साथ दीजिए पूरे पूरे 3 बजे तक।

खूबसूरती का असल राज सिर्फ दी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। दी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर

0: जी बिल्कुल, आप सुन रहे हैं जी एफ एम 88 नेटवर्क और यहाँ पर हमारे साथ बड़े प्यारे प्यारे खूबसूरत से लोग मौजूद हैं जनाब। प्रोग्राम में आप लोगों को वेलकम कहते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो किस तरह से आप हमें ज्वाइन करने वाले हैं वो भी जरा आप लोगों को बताएंगे, और इसी के साथ साथ आज के प्रोग्राम में टॉपिक क्या होने वाला है वो भी आप लोगों को बताएंगे। तो सबसे पहले जो चीज बताने वाली है वो ये कि भैया आज के प्रोग्राम का टॉपिक क्या होने वाला है। तो आज जो आप लोगों से सवाल पूछा जाएगा वो हाँ जी पहेली होगी। ओके, सो आज की जो पहेली होने वाली है प्रोग्राम की वो बिल्कुल ये है कि आप मुझे बताएं ऐसी क्या चीज है जिसके दांत बहुत हैं लेकिन वो खा नहीं सकती। हाँ जी, ये क्या चीज हो सकती है जिसके दांत तो बहुत हैं लेकिन वो खा नहीं सकती। तो जल्दी से हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं और अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो जनाब तरीकेकार बहुत ज्यादा आसान, अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK सिंगल स्पेस, दीजिए अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और उसे सेंड कीजिए 881 पर। अगर आप मुझे फेसबुक पर ज्वाइन करना चाहते हैं, फेसबुक पर सुनने वाले हैं तो जी लाड़काना FM 88.8 के पेज पर आइए, वहां पर आपको हमारे प्रोग्राम की लाइव पोस्ट मिल जाती है जिसे आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे। तो जल्दी से हमारी पोस्ट को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करते जाइए। इससे ये होगा कि बहुत सारे लोगों तक हमारा प्रोग्राम पहुंच जाएगा और बहुत सारे लोग जो है ना वो जान जाएंगे कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम उनकी स्किन के लिए कितनी और क्यों जरूरी है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में भी थोड़ी सी मालूम आप लोगों को होनी चाहिए, थोड़ी सी क्या मतलब बहुत ज्यादा वाली मालूम होनी चाहिए कि अगर आप मार्केट चले जाएं तो बस आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम ही परचेज करके आए, क्योंकि कई मरतबा ऐसा भी हो जाता है कि जब आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल नहीं होगी तो दुकानदार बोलेगा भाई साहब कुछ और ले जाएं, कोई दूसरा प्रोडक्ट ले जाएं, ये ज्यादा अच्छा है, इसका ज्यादा आजकल चर्चा है। तो आपने उसे बोलना है भाई साहब थांबा थांबा, हम सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम ही परचेज करने आए हैं और डी स्किन ब्यूटी क्रीम ही परचेज करके जाएंगे। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप भी परचेज करना चाहते हैं तो जनाब जल्दी से परचेज कीजिए, और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जो है ना ये अगर आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल नहीं है तो जल्दी से अवेलेबल कराइए और डायल कीजिए 03-12-50-25-907 बुरी 312 50 25 970 आईबीओ नंबर आहे 03-27-38-43-09 बुरी 332 है 73-84-309 ही नंबर साइन जेके डायल करी तां पांजे करीबी जनरल स्टोर से डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश के अवेलेबल कराए सगो था। सो अवेलेबल करायो, पाने खूबसूरती जो ख्याल रखो, हमेशा हमेशा जिला खूबसूरत थी वन, छो तो खूबसूरती हासिल करण अॼुकल्ह ॾाढी आसान थी वई आहे, तव्हां बि बाबा उन मां फ़ाइदो हासिल करियो ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम ऐं डी स्किन फेस वॉश जो इस्तेमाल कंदा रहो, ठीकु आहे। ओके जी, सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपकी स्किन के लिए जो है ना वो बहुत सारे फायदे लेकर आई है, और डी स्किन ब्यूटी क्रीम को चाहे आप मर्द हज़रात हैं चाहे आप ख़वातीन हैं हर कोई इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक 2-in-1 फार्मूला है। 2-in-1 फार्मूला मतलब अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते हैं तो आपको रिजल्ट जो मिलने वाले हैं वो नेक्स्ट लेवल वाले मिलने वाले हैं, यानी कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर विटामिन ई बीड्स हैं और माइक्रो बीड्स फार्मूलेशन है, तो आपकी स्किन के अंदर जो आपको रिजल्ट्स मिलने वाले हैं ना वो इतने अच्छे मिलेंगे कि आपको लगेगा कि भाई आप बहुत अच्छा कोई महंगा सा फेशियल करा के आए हैं, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर ये सारी क्वालिटीज मौजूद हैं कि आपके चेहरे को एकदम से खूबसूरत बना दे, प्यारा बना दे और पुरकशिश भी बना दे। क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम की ये भी खास बात है कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ये मेडिकेटेड फार्मूला है, तो घबराने की और टेंशन करने की तो कोई बात है ही नहीं कि भाई हमारी स्किन सेंसिटिव है, हमारी स्किन कॉम्बिनेशन टाइप है, हम नहीं लगा पाते हैं। तो कोई भी प्रोडक्ट अगर आप नहीं लगा पाते हैं तो आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम आराम से अप्लाई कर सकते हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करते रहिए, खूबसूरती का ख्याल रखिए, और जना मुझे बताइए कहाँ कहाँ पर अवेलेबल हो चुकी है और कहाँ कहाँ पर अवेलेबल करानी बाकी रहती है, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी। और अब तो भाई मार्केट में डी स्किन का फेस वॉश भी आ चुका है, फेस वॉश ने भी एंट्रियां मार ली है, तो वो भी आप परचेज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे और मुझे बताएंगे कि आपको कैसा लगा, क्योंकि फेस वॉश जो है ना वो बहुत सारे लोग यूज करते हैं, बहुत सारे लोगों का एक ना ऐसा ड्रीम होता है कि भाई हम भी अच्छा सा कोई फेस वॉश इस्तेमाल करें ताकि हमारी जो खूबसूरती है ना वो भी जरा अच्छे से निखर कर सामने आ जाए, क्योंकि कई मरतबा हम इन चीजों को समझ नहीं पाते कि कौन सी चीजें हमारी स्किन के लिए बेहतर है और कौन सी चीजें हमें अपनी जिंदगी में अवॉइड करनी चाहिए। तो यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन फेस वॉश आप बिल्कुल लगा सकते हैं, हाँ जी फुल मोकल आ तव्हां खे, सो लगाईंदा रहो या असांखे ॿुधाईंदा रहो त तव्हां किथे किथे अप्लाई कई आहे, अच्छा किथे किथे अवेलेबल कराई आहे ऐं तव्हां अप्लाई कई आहे या फिर कोन। अच्छा सवाल जेको पुछो आहे न, सवाल जो तव्हां मूंखे जवाबु ॾींदा हलो, ऐं जल्दी जल्दी असांजे प्रोग्राम जो हिसो थींदा हलो जिन माण्हुनि हाणे जॉइन कयो आहे हुननि खे ॿुधाईंदासीं बाबा टॉपिक अॼु प्रोग्राम जो इहो पुछो आहे तव्हां मूंखे ॿुधायो उहा कहिड़ी शइ आहे जंहिंखे ॾंद त इलाही सारा आहिनि पर उहा कुझु खाई नाहे सघंदी हांजी और इसी के साथ साथ यहां पर हमारे साथ फरवा गुल मौजूद है कहती हैं अस्सलाम वालेकुम गुड आफ्टरनून हैव अ नाइस डे हाय आप या कैसी हैं अल्लाह पाक आपको हमेशा सलामत रखे बहुत शुक्रिया जी आपको भी वेलकम कहते हैं नजीर खोसो हमारे प्रोग्राम में बलूचिस्तान से ज्वाइन कर चुके हैं कहते कि किसी को इतना प्यार दो कि गुंजाइश ना छोड़ो अगर वो फिर भी तुम्हारा ना बन सके तो उसे छोड़ दो क्योंकि वो मोहब्बत का तलबगार है ही नहीं बल्कि वो जरूरत का पुजारी है हाँ जी आप सही कह रहे हैं अच्छा फहीम शेख हमारे साथ है कहते हैं विसरे सारो लोग शालन न विसरे तू तो के केडो मुंह सांडियो आहे साह में अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम अदा छा हाल आहे खुश आयो सफा चाक स्लेट कलम मस्त जी दवी असां भी रुलंदा फिरंदा नेट अची वियासीं प्रोग्राम त लाजवाब आहे हमेशा जीअं अवां वांगे बहुत शुक्रिया प्यारे भाई आपको भी खुशामदीद अच्छा फरवा कहती आप ही अर्ज किया है मैं चाहूं भी तो वो अल्फाज ना लिख पाऊं जिसमें बयां हो जाए कि मैं कितनी आपकी इज्जत करती हूं दिल से ओके जी थैंक यू बहुत शुक्रिया अच्छा साजिद खान अच्छा साजिद अली कहती हैं अस्सलाम वालेकुम कैफा हाल प्रोग्राम माशाल्लाह माशाल्लाह सदरा मुस्कान थैंक यू जी थैंक यू आपको भी वेलकम हो गया मुजाहिद मलिक लिखते हैं कि फाइनली आ गई सिडो बड़ा वेट करवाती हो आर तो जी शान का सॉन्ग मेरा रांझना सुनाना मानो बिली अच्छा सुना दो मानो बिली को बोल रहे हो मानो बिली मत बोले और गाना मेरा रांझना शायद कल ही तो हमने सुना था आपने नहीं सुना था क्या अपनी पसंद का गाना नहीं सुनते हो फरमाइश पर क्यों करते हो अच्छा ये मोहम्मद जमान हमारे साथ कहते हैं गुड आफ्टरनून स्वीट बुआ जी वेलकम वेलकम कहते हैं आपको भी लिखते हैं ऑसम शो थैंक यू अच्छा मुजाहिद मलिक कहते हैं मैं घोटकी से सुनता हूँ रोज आपको और अजहर भी आपको सुनता है सलाम कह रहा है तुम्हें और आपको अजहर को भी बोल दो अच्छा वेलकम बोल दूं ठीक है अजहर आपको भी वेलकम हो गया और मुजाहिद आपको भी वेलकम हो गया डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कीजिए घोटकी में आपको डी स्किन ब्यूटी क्रीम आराम से मिल जाएगी सालार सिकंदर हमें सुन रहे हैं सालार सिकंदर आपको भी वेलकम हो गया जिब्रान खान हमारे साथ मौजूद है वालेकुम अस्सलाम क्या हाल है जी मैं ठीक हूँ आप बताएं आप कैसे हैं कहते हैं लाडली पहचाना या भूल गई जी आपको पहचान गई आप बहुत अच्छे और पुराने लिसनर हमारे अब्दुल रजाक हमें सुन रहे हैं वालेकुम अस्सलाम सिद्रा बहन कैसी हैं आपका प्रोग्राम नाइस है आपकी आवाज की क्या ही कहने माशाल्लाह डी स्किन जरूर इस्तेमाल करेंगे और सॉन्ग सुनना चाहते हैं डेडिकेट अब्दुल रजाक मुश्ताक अहद ओके ओके भाई सबकी फरमाइशें लगाएंगे जी जाहिद अली बुर्दी हमें सुन रहे हैं वालेकुम अस्सलाम मैं ठीक हूँ आप बताएं कैसे हैं दर्दी दिला चुके हैं वालेकुम अस्सलाम गुड आफ्टरनून कहती माय फेवरेट मोस्ट फेवरेट आरजे चंदा जानी कैसी हो वेलकम टू शो यू एंड मी अच्छा समझ गई बहुत शुक्रिया स्वीटी आपको भी वेलकम हो गया थैंक यू के साथ और जिब्रान कहते हैं कि वैसे यहां से गुजर रहा था तो लाडली का शो नजर आ गया सोचा एक फीडबैक कर दूं अच्छा सोचा आपने अच्छी सोची माशाल्लाह आपकी चलिए अब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का भी परचेज कीजिएगा और डी स्किन ब्यूटी क्रीम भी इस्तेमाल करते रहिए क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपकी खूबसूरती में लाए इजाफा और आपको बनाए इतना खूबसूरत कि आप बन जाएं खूबसूरत से भी ज्यादा खूबसूरत तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन का फेस वॉश आपके लिए अवेलेबल है और यहाँ पर महर इरफान सियाल साहब भी हमारा शो सुन रहे हैं कहते हैं गुड आफ्टरनून मैम ग्रेट होस्टिंग मैम आरजे थैंक यू वेरी मच सर आपकी ये मोहब्बतें हैं आप प्रोग्राम सुनते हैं फीडबैक करते हैं और उसके अलावा यहाँ पर टाइम हुआ चाहता है जी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जानिब जाएं जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आते हैं आपने कहीं नहीं जाना हमारे साथ मौजूद रहिएगा प्रोग्राम सुनते रहिए और हमारा साथ दीजिए पूरी पूरी 3 बजे तक टाइम हुआ है जी कमर्शियल का और उसके बाद आप जरा टॉपिक को फॉलो कीजिए मैं यूं जाकर यूं वापस आती हूँ सो स्टे ट्यून्ड स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग वाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते रहिए और खूबसूरत होते रहिए
1: सचल की सरमस्त धरती
2: फातिये मेहरान सिंध की एक और पहचान
1: GAFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज
3: सोना सिर्फ जेवर नहीं हर घर की अमानत होती है इसीलिए बैंक इस्लामी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो आज ही 1114752 64 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें शराइत व जवाबित लागू हैं।
4: पूरे जा पियो रेडियो ते चारे मसाले जो बुधाइन पया भला इहो त बुध आई वठी अच
5: जीजा ढोर चारो मसालो आज़मेदार वधाए खीर ए गोश्त जी पैदावार 50 सालन खा आजमायल सखरवारन जो जीजा ढोर चारो मसालो हर पंसार ए जानवरन जे डॉक्टरन खा नालो वठी तलब कंदा
6: हा भाग भरी चंगो थो लगे मा हाणे ही थो वठी अचा
7: जी जान चारो मसालो हर वेझे पंसार स्टोर ए जानवरन जे डॉक्टर खा नालो वठी खरीद करियो
8: धर माशुम वरकोटी वरकोटी कदमुना दयो नवी दुनिया पलोर रवानवी خود پولیو رنز دا قدمونه او درولې هم شي نو په دې وجہ د پولیو د هر مهم په محل د پولیو ټیم د دروازې ټکولو جواب ورکوي او خپل ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي دوه ساسکي ورکول مه هیروي ځکه چې هم دغه ساسکي د ماشومانو د بدن دفاعي طاقت زیاتوي او د هغې د خوبونو الوت وزر مومي پولیو یعنی مستقله معذوري
9: अवां जी स्किन डल ए बेरोनक लगे थी हाने पहिजी स्किन के दियो एक नओ गिलो पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन के बनाए फ्रेश सॉफ्ट ए ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो दी अवां के रेडिएंट लुक रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट हाने थियो खूबसूरत थियन वधिक आसान वाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर डी बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर लाए वाइट एज ब्यूटी क्रीम सा गड इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान खुशखबरी लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे बाजू टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट बार बार वेक्स और शेविंग से निजात नरम साफ और खूबसूरत जिल्द कम वक्त बेहतरीन नतायज अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहरापुर 03003385569 खुशखबरी क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं अब फिक्र छोड़िए शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहरापुर 03003385569

0: पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वहण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-851।
1: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो जी एफ एम 94।

ओके जी, वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी, सकरण मेहरापुर मादली मटियारी नूरियाबाद और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो। बिल्कुल जी, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन फेस वॉश मौजूद है। बिल्कुल जी जनाब, खूबसूरतियाँ हासिल करना चाहते हैं और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, ये तो जरा बात ही नहीं बनती ना। तो अगर आप खूबसूरत बनना चाहते हैं और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करना चाहते हैं, हाँ ये बात बन रही है। डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम की अगर यहाँ पर बात की जाए तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपकी खूबसूरती में इजाफा इसलिए लाने वाला प्रोडक्ट है क्योंकि ये जनाब 2-in-1 फार्मूला है। क्योंकि जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करेंगे तो इस्तेमाल के फौरन बाद ही आप लोगों को ऐसे रिजल्ट्स मिलने वाले जो कि आप लोगों को किसी महंगे से फेशियल से भी शायद मिल पाते हो। क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर विटामिन ई बीड्स हैं, माइक्रो बीड्स हैं, अल्फा आर्बुटिन है, कोचिक एसिड है, ग्लूटाथायोन है। बिल्कुल, ये सब चीजें सुनने में ऐसा महसूस होता है वाइब ऐसी आ रही है कि भाई ही तो डाढ़ो मतलब मांगो प्रोडक्ट हूँ अड़ी का भी गाल कोने का महंगो प्रोडक्ट ना ही बाबा, मुनासिब कीमत में तवांखे डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिली रही है। एंड डी स्किन ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल का फौरन बाद ही तवांखे एड़ो जबरदस्त निखार मिलंदो, एड़ी जबरदस्त ब्यूटी मिलंदी जो तवां पाणी चवंदा आए हाय मजा ही अची वया। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो मेडिकेटेड फार्मूले से तैयार थियल है और डी स्किन ब्यूटी क्रीम तवांजी हर स्किन के हिसाब से तैयार थियल है, चाहे तवांजी स्किन सेंसिटिव है, कॉम्बिनेशन टाइप है, नॉर्मल है, ऑयली है या जै भी टाइप की तवांजी स्किन है, हर स्किन के मथा डी स्किन ब्यूटी क्रीम को इस्तेमाल कर सकते थो। और चाहे आप लड़कियां हैं, लड़के हैं, मर्द हजरात हैं, खवातीन हैं, हर कोई डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर सकता है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम से फायदा उठाइए और जनाब डी स्किन ब्यूटी क्रीम सिर्फ 2 दिनों में वाजे नतायज दे रही है आपकी स्किन के ऊपर। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप इस्तेमाल करें तो ये चीज भी आपके जहन में होनी चाहिए कि सिर्फ 2 रातों के इस्तेमाल के फौरन बाद ही आपको अच्छे खासे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल आपकी परफेक्ट खूबसूरती के लिए बिल्कुल परफेक्ट साबित होने वाला है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बेशक लाजमी इस्तेमाल कीजिएगा, लेकिन जो आपको नंबर बता रही हूँ ना प्रोग्राम के अंदर उसके ऊपर जरा रब्ता कीजिएगा और नंबर डायल करने के फौरन बाद ही आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल करा दी जाएगी। क्योंकि भाई आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर मिलनी चाहिए प्रोडक्ट ताकि आप बस जाएं और परचेज करके आ जाएं। क्योंकि ये चीज भी बड़ी आसान सी हो जाती है कि भाई आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर तमाम प्रोडक्ट्स वो मिल रहे हो जो कि आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो चाहे आप किसी भी एरिया से हैं, किसी भी सिटी से आपका ताल्लुक है, किसी भी गांव से आप हमारा शो सुन रहे हैं, प्रोग्राम सुन रहे हैं, हमारी आवाज आप तक आ रही है, तो मतलब आप हमारे इस प्यारे प्रोग्राम का हिस्सा हैं। तो आप भी अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन फेस वॉश का अवेलेबल कराइए, उसके बाद परचेज करते जाइए। डी स्किन ब्यूटी क्रीम तो आप जानते हैं जनाब क्या क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ साथ आपको डी स्किन फेस वॉश भी मिल रहा है। तो डी स्किन का जो फेस वॉश है ना, ये भाई इतना जबरदस्त इतना कमाल का प्रोडक्ट है कि जब आप ये दोनों प्रोडक्ट परचेज करेंगे, चाहे वो डी स्किन ब्यूटी क्रीम हो या फिर डी स्किन फेस वॉश हो, लगाने के बाद और परचेज करने के फौरन बाद ही आपको एहसास होगा कि वाकई आप कितना अच्छा कितना प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कि हाइलुरोनिक एसिड सीरम से तैयार की गई है, आपकी खूबसूरती में निखार लाने के लिए परफेक्ट फेस वॉश साबित होने वाला है। जो लोग कहते हैं कि भाई हम साबुन नहीं लगाते हैं, साबुन से थोड़ा सा मतलब आपको मसला होता है, आप चाहते हैं कि भाई कोई हमारे पास अच्छा सा फेस वॉश होना चाहिए, तो फेस वॉश में अच्छा सा फेस वॉश अगर आप तलाश कर रहे हैं तो डी स्किन फेस वॉश आपके लिए बेस्ट साबित होने वाला है और वो भी फॉर एवर के लिए। तो डी स्किन का फेस वॉश यूज कीजिए, आपकी स्किन हाइड्रेट रहेगी, मॉइस्चराइज रहेगी और क्लीन भी रहेगी। तो डीपली क्लीन अगर आप अपनी स्किन को करना चाहते हैं तो डी स्किन का फेस वॉश आप ही के लिए है। डी स्किन का फेस वॉश यूज करते रहिए, खूबसूरतियां हासिल करते रहिए और जरा खूबसूरती दुनिया में कदम रखते जाइए क्योंकि ये आप डिजर्व करते हैं। जल्दी जल्दी से हमारे प्रोग्राम का हिस्सा भी बनते जाइए, पोस्ट को जरा लाइक और शेयर किया करें। लाइक नहीं करते हैं आप, इतनी कंजूसियां, हाय अल्लाह यो सही कौन था वे। अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन फेस वॉश को अवेलेबल कराना चाहते हैं तो जनाब डायल कीजिए 03-27-38-43-09 बुरी 332 है 73-84-309 नंबर आहे 03-12-34-9-9
50-25907 ॿुड़ी 312 50-25 970 ही ॿई नंबर आहिनि जेके तव्हां डायल करे पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर ते चाहे डी स्किन ब्यूटी क्रीम हुजे या वरी डी स्किन फेस वॉश हुजे तव्हां इज़ीली अवेलेबल कराए सघो था. अवेलेबल करायो तव्हांजे लाइ आसानी थी वेंदी, तव्हांखे काॾे ॿाहिरि वञण जी ज़रूरत न पवंदी. बसि तव्हां वञो पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर ते ऐं तव्हांखे डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिलंदी हुजे. सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जा कमाल ई कमाल आहिनि बाबा. इस्तेमाल कयो जी तव्हांखे ख़बर पए त डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हांजी स्किन जे लाइ छो ज़रूरी आहे. अच्छा, मां तव्हां खां सवाल पुछियो आहे. सवाल इहो पुछियो आहे त तव्हां मूंखे ॿुधायो वो क्या चीज है जिसके दांत तो बहुत हैं लेकिन वो खाती कुछ नहीं है. हाँ जी, और इसी के साथ साथ आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते जा रहे हैं. आपके लिए अच्छे अच्छे गाने मैंने जरा लिस्ट में लगाए हैं, तो आइए जरा हम गाने भी सुनते हैं. आप क्या कह रहे हैं, आपके मैसेजेस और फीडबैक्स की जाने भी आ जाते हैं. आप जरा पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए. और जो कंजूस लोग पोस्ट को लाइक नहीं करते हैं ना, अरे भाई कर दिया करें, कोई पैसे नहीं लगते, तो लाइक कर दें, शेयर कर दें. बहुत सारे लोगों को बताना है कि मार्केट में डी स्किन ब्यूटी क्रीम आ चुकी है. सो एंजॉय दिस ब्यूटीफुल ट्रिक एंड हैव अ गो.

भैया की नजरें कितनी तेज है ना, कसमें मैं कभी कभी थोड़ा सा हैरान हो जाती हूँ, मेरी लिसनर्स इतनी तेज है। अच्छी बात है, साबित कर दिया मेरी लिसनर्स हैं।

बिल्कुल जी, पोस्ट को लाइक और शेयर करते जा रहे हैं। दर्दे दिल कहती हैं कि अल्लाह रबे करीम से दुआ है कि वो पाक जात आपकी जिंदगी में इत्मीनान कल्ब की ऐसे दिए रोशन करे जिनकी रोशनी कभी मध्यम ना हो, खुशी के ऐसे फूल खिले जिनकी खुशबू और ताजगी कभी मानिद ना पड़े, चेहरे पर खुशियों से भरपूर मुस्कुराहट हमेशा बरकरार रहे, खुश रहें, शाद रहें, मुस्कुराती रहें और खुशियां बांटें, हमेशा मुस्कुराहट लबों पर सजाए रखें। बहुत शुक्रिया जी, आमीन, थैंक यू, आप हमारे साथ हैं। दर्दे दिल एहसन अरबानी कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, उलैले सलाम अदद। ओ माय फेवरेट आरजे मैडम मुस्कान, कैसी हैं आप? वेलकम, आपको भी वेलकम हो गया जी। और ये हमारे साथ ही हमारी निधि कहती है अस्सलाम वालेकुम स्वीटी आरजे, वेलकम टू शो, कैसी हो शोना, टॉपिक ओके ओके। दर्द दिल कहती है ये क्या है, यानी कि सवाल के ऊपर बोल रही है। अच्छा, उन्हें कहा अलावा फहीम तमाम भी टॉपिक जो जवाब देने हुआ है, और निधि आपने क्या ही टॉपिक का जवाब दे दिया है।

बिल्कुल जी, पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिए और मुझे बताइए डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल किया या फिर अभी तक कर रहे थे हैं आप। लिस्ट में आइए जनाब, डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाने वालों की लिस्ट में आइए। और जी साथ साथ निदड़ी की दी आवाज ही लग रहा है, तबीयत कुछ ठीक नहीं है। यूकी नहीं, मैं बिल्कुल फिलफाट अल्हम्दुलिल्लाह। आप बहुत दिनों के बाद शायद सुन रही होंगी इसीलिए आपको ऐसा लगा होगा। और चाचा खालिद कहते हैं हाय सिद्रा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ जी, आप बताएं चाचा कैसे हैं? अच्छा ये हिदायतुल्ला कहते हैं सलाम, कैसी हो? ये सॉन्ग चलाना दिलबर बक्सी का, वैसे ये कॉपी सॉन्ग है तो आपके प्रोग्राम का वो क्या बोलती हो ना टेम्पो भी खराब नहीं करेगा। चले ठीक हो गया, मैं देखती हूँ मुझे मिल गया तो लगा लेते, नहीं तो आप ऐसा कीजिएगा जरा मुझे लिंक शेयर कीजिएगा।

प्रोग्राम वाई जेशन डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से आप लोगों तक नशर किया जा रहा है। तो अगर आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया जी। डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल आपकी खूबसूरती में चार चांद लगाने वाला है। डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपको बना देगी ऐसा खूबसूरत जैसी खूबसूरती आप हासिल करना चाहते थे। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करते रहिए और खूबसूरती को पहचानिए, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर विटामिन ई बीट्स हैं और माइक्रो बीट्स भी हैं। यानी कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपको ऐसे रिजल्ट्स देने वाली है जैसे आपने कोई महंगा सा फेशियल कराया हो। तो जल्दी जाइए डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज कीजिए, खूबसूरत होते जाइए। अच्छा, डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ डी स्किन का फेस वॉश भी इन हो चुका है मार्केट में। तो अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज करें तो साथ में डी स्किन का फेस वॉश भी परचेज कीजिएगा, क्योंकि खूबसूरती चाहिए वो भी मुकम्मल वाली। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल आपकी स्किन के लिए, आपके जल्द के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इस्तेमाल करते रहिए और मुझे बताते जाइए कि आपके एरिया में भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल रही है और हाँ, आप भी इस्तेमाल कर रहे हैं।

अच्छा साजिद अली, बिल्कुल मैं कोशिश करूंगी, जामिन का गाना लगाएंगे और बहुत अच्छा वाला गाना लगाएंगे, ठीक है जी? चाचा कहते हैं आपकी आवाज बहुत अच्छी है, अपनी आवाज में सॉन्ग तो सुनाएं, मैं कोशिश करूंगी आपको गाना सुनाऊं। और कहते हैं कि हवाओं में, अच्छा ये वाला सुनना चाहते हैं, ठीक है जी? कोई दूसरा ना सुना दूं? अच्छा नजर मोमन भट्टिया में सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। कहते हैं आज मेरी पसंद का सॉन्ग चलेगा सनम आरवी, मैं कोशिश करती हूँ जी। और फहीम भाई कहते हैं कि पानी से प्यास ना बुझी तो मैं कदी की तरफ निकला, सोचा तेरी शिकायत बस कर दे। डीस्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कीजिए। और नसीम गुलाम दीन भाई, वालेकुम अस्सलाम। विलेज अली बख्श जकड़ो खां, आपका शो आपकी तरह है बहुत अच्छा और हम नूरियाबाद वाले वेट करते हैं। किस चीज का? मेरे प्रोग्राम का, सच्ची।

क्या बात है जी, क्या बात है. आपकी कमेंट्स ऐसे धड़ाम धड़ाम आते जा रहे हैं, ऐसी पोस्ट को भी लाइक कीजिएगा. ज़ाहिद अली बुर्दी कहते हैं ब्यूटीफुल एंड नाइस एवन शो सिर्फ 88 पर सदरा मुस्कान गुल गुलाब जो जियो करे से अल्लाह. अच्छा मोहम्मद अली खुसू भाई हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम अठियारी से आपने हमें ज्वाइन कर दिया, बहुत शुक्रिया. चौधरी कहाफुल्ला मेथलो हमारे साथ है, वालेकुम अस्सलाम जी. कहते हैं कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ जी, आप बताएं आप कैसे हैं? परवा आपने टॉपिक का जवाब दिया, ठीक है जी. रशीद खुसू भाई हमें सुन रहे हैं हैदराबाद से, भाई को वेलकम कहते हैं.

ओके जी, क्या बात है, बड़ा ही प्यारा गाना एंजॉय कर रहे हो। यहाँ पर हमारे साथ जितने भी लोग मौजूद है वो सारे लोग डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करेंगे जनाब, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल के फौरन बाद ही आपको वो खूबसूरती मिल रही है जो कि आप हासिल करना चाहते हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन फेस वॉश आप जरा अपने करीबी जनरल स्टोर पर अवेलेबल कराइए, लेने में आसानी हो जाएगी ना, ये इसलिए कहती हूँ। तो जो नंबर आपको प्रोग्राम में बताए जा रहे हैं उनके ऊपर जरा रब्ता कीजिएगा और अपने करीबी जनरल स्टोर पर अवेलेबल कराते रहिए और खूबसूरतियाँ हासिल करते रहिए।

अच्छा मोहम्मद अल खोसो भाई और बाबल खोसो अयूब भट्टी कहते हैं हमारा प्रोग्राम सुन रहे, बहुत शुक्रिया जी। और साजिद भाई लिखते हैं कि कभी किसी से प्यार मत करना, अगर हो जाए तो इनकार मत करना, अगर निभा सको तो चलना उस राह पर, वरना किसी की जिंदगी बर्बाद मत करना। क्या बात है जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात आपने शेयर कर दी है। और नसीम भाई लिखते हैं कि जब वक्त खराब चल रहा हो तो पीछे से हंसने वाली आवाजें जानी पहचानी लगती है। क्या बात बोल दी। और कहते हैं कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम बेहतरीन है, हमने यूज की है। जिस बहन भाई को गिफ्ट चाहिए हमसे राबता करें, मैं सबको शो सुनने वालों को गिफ्ट करूंगा, जिसको गिफ्ट चाहिए मत करें भाई, सबको बोलें भाई अपनी अपनी लें। ये मानन के थोड़ो मतलब जेको आ ना इंडिपेंडेंट बनायो, वो मतलब आसरे में न रहन, सो आसरा अगर तुम रखंदा ना, ये आसरन वारियूं चीजू ढाडियूं कमजोर होंदी आ। सो भाई पाण वेठो गिफ्ट के आसरे न लगो, डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो ऐं सोणा थी वञो।

हाँ जी, अगर आप भी मैजिक दिखना चाहते हैं तो डीज स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कीजिएगा. और डीज स्किन ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल के फौरन बाद ही आपको इतना खूबसूरत सा निखार मिलेगा कि आप खुद ही कहेंगे जनाब क्या बात है, क्या बात है. और डीज स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल आपकी खूबसूरती में चार चांद लगाने वाला है. तो इस्तेमाल करती रहिए और खूबसूरतियाँ हासिल करते रहिए.

अच्छा मलेश इकबाल लाशारी हमारे साथ है मीरपुर खास से, आप हमारा शो सुन रहे हैं। सिद्रा सवाल का जवाब है बिल्कुल ओके। न्याज भट्टी कादरी हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम सलामत। अच्छा मटियारी खान तव्हां असांखे ज्वाइन कयो आहे, भांजो मोहबत हुआ आहिनि, तव्हां मोहबत सां असांजो प्रोग्राम ॿुधंदा आहियो, सो थैंक यू वेरी मच। अच्छा चाचा कहते हैं तोखे ख़बर आहे चाचा गाननि जो शौक़ीन आहे, तू गाना प्ले कर। अच्छा ठीक है, मां डी स्किन ब्यूटी क्रीम सेल कराए दींदुस, डोंट वरी। चले अच्छी बात है, डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप परचेज कीजिएगा। और उन खां अलावा एसन कहते हैं मेरे कमेंट से, हाँ हाँ अच्छी बात है अच्छी बात है। चाचा कहते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम ने धूम मचा दी है, हाओ को शक को नहीं नगाल में। आमिर खान महेश्वर हमारे साथी, वालेकुम अस्सलाम। सरमन सिंधी जो गानो तवां के बिल्कुल बुधराइंदासी मोहब्बतों प्रोग्राम बुधो पिया। निजाम भट्टी कादरी भाई थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ है। और जी आपके साथ है नियाज भट्टी, निजाम भट्टी, अली शेर भट्टी, फराज भट्टी, जायद भट्टी, फरहान अली भट्टी, ओके सब भट्टी ब्रदर्स को बोलिए कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करें, ठीक है। अच्छा फहीम भाई कहते हैं भाऊ या तारीफ आए या टोकू, तारीफ हुई बाबा तारीफ। अच्छा हिदायतुल्ला आपने भी टॉपिक का जवाब दिया है, ठीक है। नसीम भाई आपने भी टॉपिक का जवाब दिया है, ठीक है। तो प्रोग्राम में साथ रहिए और सुनती रहिए हमारा प्रोग्राम। यहाँ पर टाइम हुआ है जनाब, हम जाएंगे न्यूज ब्रेक के जाने, उसके बाद जल्दी वापसी आप लोगों के पास। सुनती रहिए और हमारा साथ दीजिए, क्योंकि आप सुन रहे हैं व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट। यूज करते रहिए और खूबसूरतियाँ हासिल करते रहिए।

0: कई वयो वफाकी घर वजीर मोहसिन नकवी पारां फोर्सिस के दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ कामयाब कार्रवाई ते भेटा पेश।
1: एमक्यूएम सां वाग़ियल वफ़ाक़ी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल सूबनि जे क़याम बाबति क़ानून में तरमीम करण जो मुतालबो करे छॾियो। मुस्तफ़ा कमाल चयो आहे त असां इंतज़ामी यूनिट्स जा हामी आहियूं, इंतज़ामी यूनिट्स जे क़याम खे लीड कंदड़ असांजो हीरो हूंदो। गार कंद कंदड़ ॿुधी छॾनि त गारनि सां काफ़िला नाहिन रुकबा। असां कंहिं बि क़ौम ख़िलाफ़ नाहे ॻाल्हायो, रुगो पीपल्स पार्टीअ जी ॻाल्हि कई आहे। करप्शन कंदड़ बुज़दिल हूंदो आहे, कॾहिं बि पंहिंजी जान नाहे ॾींदो। असां क़ुर्बानीूं ॾियण लाइ तयार आहियूं।
0: ईरान सां जंग जल्द ख़त्म थी वेंदी, जंग जे ख़ात्मे सां तेल बि सस्तो थी वेंदो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त तहरान खे एटमी हथियारनि खां रोकण लाइ फ़ौजी कार्रवाई ज़रूरी हुई। ईरान ते बमबारी न कयूं हा त एटमी हथियार ठाहे वञा। सदर ट्रंप रूस ऐं ईरान ते पाबंदी मरण वारो बिल ते बि सहियूं करे छॾियो।
1: दुश्मन जी कंहिं बि ग़लतीअ जो ताक़त सां जवाब ॾियण लाइ 100% तयार आहियूं। पासदार इनकलाब जे कमांडर मोहम्मद कवी चयो आहे त तहरान जारीअ जो जवाब ॾियण जी भरपूर सलाहियत रखे थो। मुल्क दुश्मन अंसरनि खे मुंहुं ॾियण लाइ 1.5 लख खां वधीक जान निसारनि खे सरगर्म करे छॾियो आहे।
0: ट्रंप CNN समेत मीडिया जे टिन इदारनि ते व्हाइट हाउस में दाख़िला ते पाबंदी लॻाए छॾी। पाबंदी हेठि आयल इदारे में MS नाओ ऐं पॉलिटिको नाले ख़बरू इदारे बि शामिल। समाजी वेबसाइट ते जारी कयल बयान में सदर ट्रंप चयो आहे त टई इदारा लगातार इंतज़ाम जे ख़िलाफ़ कूड़ियूं ऐं ख़्याली ख़बरूं हलाए रहिया आहिनि।
1: जॾहिं इस्लामाबाद लाइ निकरंदासीं त हर सूरत में पहुचंदासीं। पेट्रोल तां लेवी जी फातिमे ताईं लॉन्ग मार्च ख़त्म न कंदासीं। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे जमायत इस्लामी जे अमीर हाफिज़ नईम चयो आहे त हुकुमरान करप्शन ऐं फुरलुट ख़त्म करण लाइ तयार न आहिनि। IMF रुगो बहानो आहे, हीअ अवाम खे रिलीफ ॾियण लाइ तयार न आहिनि।
0: सिंध बार काउंसिल जे सॾु ते सिंध जे इम्कानी विरहाङे ख़िलाफ़ वकीलनि जा मुख़्तलिफ़ शहरनि में मुज़ाहिरा। हैदराबाद, खेरपुर ऐं रोहिड़ीअ में अदालती कार्रवाइनि जो बाइकाट ऐं मुज़ाहिरा। वकीलनि जो चवणु आहे त सिंध जो विरहाङो कंहिं बि सूरत में क़बूल न आहे, साज़िश कंदड़नि खे मात ॾिनी वेंदी।
1: चक जे कारे तकरार सां जतोई धुरिन में झेड़ो, हिकु ॼणो क़तल, औरत समेत 2 ॼणा ज़ख़्मी। घर पंहिंजा वारे इलाइक़े में पुराणे कारे तकरार सां जतोई बिरादरी जे ॿिनि धुरिन में झेड़ो थियो। फायरिंग जे नतीजे में 2-2 जतोई मारिजी वियो। लाश इस्पताल मुंतकिल कयो वियो आहे। धुरिन में तकरार तेज़ थी वियो।
0: मेयड़ में शहरनि जो बुनियादी सहूलियतुनि जी खोट ख़िलाफ़ पियादल मार्च। बिलावल कॉलोनी, हमदम कॉलोनी ऐं एजाज कॉलोनीअ में बुनियादी सहूलियतुनि जी खोट ख़िलाफ़ एहतजाज कयो वियो। मुज़ाहिरनि चयो त टिन्ही कॉलोनियुनि में न घिटियूं ठहियूं आहिनि, न ई पीअण जो पाणी आहे, सफ़ाई बि नथी कराई वञे, मसाला हल कया वञनि।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 0300-338-5569।
4: मालवन भारन लाए खुश खबरी, 50 सालन का आजमायल सखर वारन जो जी जान ढोर चारो मसालो, जानवरन में खीर ऐं गोश्त वधाए, अव्हां खे खुशहाल बणाए। हर पंसार ऐं जानवरन जे डॉक्टरन वटि दस्तियाब आहे।
5: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
6: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौक सीमेंट रेती क्रेश रंग वगैरह बाजार का बार या

0: साहब आई।
1: हाँ ये चू मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
0: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 02424601000।
2: हर माशूम वरकोटी वरकोटी कदमुना दयो नवी दुनिया पलोर रवानवी खुद पोलियो रंज दा कदमुनो द्रवले हमशी नुपदी वजह द पोलियो द हर मुहिम प महाल द पोलियो टीम द दरवाजे टकोलो जवाब वरकवई अखपल माशुमानो ता द पोलियो द मखनिवी द्वसास की वरकवल माहिरवई जकच हम दगसास की द माशुमानो द बदन दिफाई ताकत ज्यादवी औ द हगी द खूबुन वलवत वजरी मुमी पोलियो यानी मुस्तकिल माजूरी।
3: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे झुर्रियां और कील मुहासे फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक शाही बाजार मेहरापुर 03000-3105-109 03000-3105-109।
4: माशाला फौजी पाइप फैक्ट्री नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेहरापुर असा जगह जो जारियों जगह जा पावा पाइप डेढ़ ब चार छह नव 12 इंच में प्लेन कॉलम में मौजूद आहिन। फौजी बायरन लाए खसूसी रियायत होंगी। राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 03-54-4456
5: इरशाद ऑटोज आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोज आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनिया जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाए 03200180003।

marido Mustafa Kamal. फिक्र होकर के ये कमाल है डी स्किन ब्यूटी क्रीम का, और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आके करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल हो चुकी है, तो बस जाइए और परचेज कीजिए। अच्छा, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम तो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे बताया करें कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसके साथ साथ अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर भी अवेलेबल कराना चाहते हैं तो पूरे प्रोग्राम में आप लोगों को नंबर बताया जाता है जिसके ऊपर रब्ता करके आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल करा सकते हैं। ठीक हो गया जी, तो हम प्रोग्राम के दूसरे घंटे में मुखातिब हो चुके हैं जिन लोगों ने अभी अभी सुनना स्टार्ट किया या फिर जो स्टार्टिंग से लेकर हमारे साथ मौजूद है, सभी को वेलकम इन खुशामदी। बिल्कुल, आपकी मोहब्बतों, समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। और आज मैंने आप लोगों से प्रोग्राम के अंदर सवाल पूछा है कि आप मुझे बता रहे हैं कि ऐसी क्या चीज है जिसके दांत बहुत है लेकिन वो कुछ खा नहीं सकती। ओके जी, सो जल्दी से आप मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए और मैं आपको डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में बता रही हूँ। तो थोड़ी थोड़ी सी बेसिक सी चीजें तो मैंने आप लोगों को बता दी कि भाई डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ये मेडिकेटेड फार्मूला है, और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो आए ही वाइटामिन ई बीट्स अथस माइक्रो बीट्स अथस उन खां अलावा डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो आए अगर निशानी जे तौर ते तव्हां वञो था तव्हांखे ख़बर न आहे त डी स्किन ब्यूटी क्रीम कीअं असां परचेज़ कयूं, यानी कि तव्हांखे दुकानदार चूनो लॻाइनि था त तव्हां उल्टो दुकानदार खे चूनो लॻायो बाबा, तव्हां उनखे चओ त बाबा असांखे डी स्किन ब्यूटी क्रीम जी ख़बर आहे ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे मथां डॉक्टर माई जो फोटो आहे। ठीकु आहे, अगरि डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हां परचेज़ करणु वञो था त इहा निशानी सफ़ा इनफ आहे त डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे मथां डॉक्टर माई जो फोटो आहे, सफ़ा इहा निशानी तव्हांखे अगरि ख़बर हूंदी न त पोइ तव्हां वेंदा त तव्हां आराम सां डी स्किन ब्यूटी क्रीम ई परचेज़ करे ईंदा। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हांखे ॻोठ में आहियो, तव्हां कंहिं शहर में आहियो, हर जॻह ते तव्हां वञी आराम सां जेको आहे न परचेज करे सघो था। पर हिकिड़ी इहा बि ॻाल्हि आहे, अगरि तव्हांजे करीबी जनरल स्टोर ते अवेलेबल न आहे त तव्हांखे जेके नंबर ॿुधाया वञनि था उन नंबर से राबितो करे तव्हां पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल बि कराए सघो था। ओके जी, तो ख़ूबसूरती तो हम लोग सारे लोग ही चाहते कि भई हमें ख़ूबसूरती मिलनी चाहिए, ये जो चेहरे पे निशानात हैं, ये रिंकल्स हैं, या फिर अपनी उम्र से बहुत बड़े लगना हम स्टार्ट हो चुके हैं, ये सब इस वजह से होता है क्योंकि आप अपने चेहरे का ख्याल नहीं रखते हैं। और चेहरे का ख्याल ना रखा जाए, मुनासिब से केयर ना की जाए तो भाई आपकी चेहरे की स्किन ज़ाहिर सी बात है डल होने लग जाती है, आपके चेहरे की स्किन मुरझाने लग जाती है, आपके चेहरे पर जो है ना रिंकल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर आप भी इन तमाम चीज़ों से बचना चाहते हैं और आप भी चाहते हैं कि भाई खूबसूरती हमें कैसे भी करके अब हासिल करनी है क्योंकि टोटके लगाना और ये तरह तरह के केमिकल वाले प्रोडक्ट से आप बेजार हो चुके हैं, तो आपके लिए आसान सा प्रोडक्ट है जनाब डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट। और सबसे बेहतरीन बात कि ये मेडिकेटेड फार्मूला है, यानी कि जो डॉक्टर्स होते ना स्किन से रिलेटेड डॉक्टर्स, उन्होंने मिलकर ये फार्मूला तैयार किया गया है। और ये इतना प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट है कि जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि भाई हम वाकई कुछ अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो खूबसूरती हर किसी की ख्वाहिश है, लेकिन खूबसूरत के साथ ऐसा होता है ना, खूबसूरती के साथ साथ आपकी जल्द जो होती है वो एक अच्छी सी केयर भी जा रही होती है। और जरूरी यही हो जाता है कि आप अपनी रोजमर्रा ब्यूटी के रूटीन में एक खूबसूरत इजाफा करें और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करें। तो बिल्कुल जनाब, डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपकी रूटीन का हिस्सा जब आप बना लेंगे ना तो ये क्रीम आपकी रोजमर्रा स्किन केयर को मजीद आसान और खूबसूरत बनाने के लिए बहुत ही बेहतरीन इंतखाब साबित हो सकता है और आपके जल्द को नरम, मुलायम और सॉफ्ट रखेगा, और साथ ही साथ आपकी स्किन हमेशा मॉइस्चराइज रहेगी और आपकी स्किन केयर जो है वो बहुत ज्यादा आसान भी हो जाएगी। तो अच्छी तरह अगर आप अपने चेहरे का ख्याल रखना चाहते हैं, खूबसूरती को जरा निखारना चाहते हैं, खूबसूरत खूबसूरत रहना चाहते हैं, चेहरे को ताजगी देना चाहते हैं और हमेशा ग्लो में रहना चाहते हैं, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल आप लोगों के लिए है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल ये बात बड़ी मजे की और कमाल की बताने लगी हूँ कि भाई ऐसा नहीं कि सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम को सिर्फ खवातीन इस्तेमाल करेंगी, आप मर्द हजरात भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कर सकते हैं। डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप सब लोगों की स्किन से रिलेटेड है जनाब, सारे लोग इस्तेमाल कीजिए, खूबसूरती का जरा फायदा उठाइए और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करते जाइए। और साथ में आप लोगों के लिए डी स्किन का फेस वॉश भी अवेलेबल हो चुका है, और फेस वॉश अगर बात की जाए तो फेस वॉश भी कमाल का प्रोडक्ट है। और डी स्किन का जो फेस वॉश है ना, ये हाइलोरोनिक एसिड सीरम से तैयार किया गया है, और ये जो सीरम होता है ना, ये इतना कमाल का होता है, आपकी स्किन के अंदर तक जाता है, आपकी स्किन को डीपली क्लीन करता है, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, आपकी स्किन को हमेशा के लिए क्लीन और खूबसूरत बना देता है। और दिन भर की मसरूफियात के बाद जब चेहरे पर थकन और ये तमाम गर्द गुबार आपके चेहरे पर आ जाती है या फिर एक्स्ट्रा ऑयल आपके चेहरे पर जमा हो जाता है, और ये सब चीजें जब हद से ज्यादा बढ़ने लग आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और रोजाना इस्तेमाल से मुराद यही है कि आप डी स्किन का जो फेस वॉश है ना, ये दिन में 3 से 4 मरतबा लगाइएगा, ठीक है,
यानी कि सुबह को लगाया, दोपहर को लगाया, शाम को लगाया, और रात को सोने से पहले तो फेस वॉश लाजमी किया कीजिए. रात को फेस वॉश जो होता है ना, वो बहुत सारे जल्द के मसाइल से आपको दूर रखता है. तो रात का फेस वॉश मतलब अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए. और डी स्किन का फेस वॉश यूज करते रहिए. सुबह के वक्त लगाएं या दिन में लगाएं या रात में लगाएं, हर वक्त जब भी आप लगाएंगे तो आपको ये एहसास होगा कि वाकई आप कितना अच्छा प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं और वाकई कितना अच्छा प्रोडक्ट आपके एरिया में अवेलेबल हो चुका है. तो जनाब डी स्किन का फेस वॉश आप यूज करते रहिए, खूबसूरती में जरा इजाफा देखिए और हमेशा खूबसूरत रहिए. उनके अलावा अगर तुम पांजे करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल कराइन चाहियो था, उन चला तमा के नंबर बुधाए विनाइन प्रोग्राम जे अंदर से कि तमा डायल करे पांजे करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल कराए सको था. सो नंबर आहे जनाब 033-27-38-43-09. बड़ी 300 है 73-84-309. यो नंबर आहे 03-12-50-25-907. बड़ी 312 50-25-907. सो ही नंबर साइन जेके डायल करे ता पाजे करीबी जनरल स्टोर से डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश के अवेलेबल कराए सको था. सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम हुजे एंड डी स्किन फेस वॉश हुजे लगाईंदर ओ बाबा खूबसूरती हाने तवा जे पोया पोया इंदी. सो खूबसूरत रहन चाहियो था एंड खूबसूरती के वेलकम करन चाहियो था, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश खा बिना तो तांगे खूबसूरती मिलंदी कोन. सो वन्यो बाबा वठी अचो एंड खूबसूरत खूबसूरत रहो. खूबसूरतियां अब बहुत ज्यादा आसान हो चुके हैं. तो उन तमाम टॉपिक ते भी गालाइंदा वनो था, टॉपिक के फॉलो करना वनो था, असांजी पोस्ट के लाइक एंड शेयर करना वनो बाबा, पांजी हुजन जो सबूत दियो, तमा जिंदा आयो मके खबर हुजन घुर्जे. आई पैनल ते अगर नजर दौड़ाया थी तो पैनल ते तमा जा कुछ फीडबैक्स आहन. आई पैनल ते इंदासी बाबा, पैनल ते भी इलाही सारा मानू असा से गड वेठा है, आई इलाही इलाही गालियों कन था.

ओके जी, सो ये हमारे साथ है नेक मोहम्मद पालारी फ्रॉम नूरियाबाद, कहते हैं बाजी सिद्रा मुस्कान आपके शो की क्या ही बात है, बहुत शुक्रिया प्यारे भाई, आपकी मोहब्बतें होती हैं। मीरपुर खान से अब्दुल्ला महर हमारे साथ, वालेकुम अस्सलाम, और आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। और चाचा खालिद भी हमारे साथ पैनल पर मौजूद है, और पैनल ते तमाम टॉपिक जो जवाब देनो है, ठीक है जी, ठीक है। और ये हमारे साथ मौजूद है सलाम सटो बाजी, मुझे लगता है हकीकत में जी जी भाई आपको बिल्कुल सही लगता है और आपने आगे क्या लिखा है, चलिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ हैं फिरदोस मोरो से, थैंक यू वेरी मच फिरदोस भाई, आपको वेलकम कहते हैं। और हमारे साथ ही चाचा खाले तमाम गाने जी फरमाइश कई, ठीक है जी। अच्छा फिरदोस भाई सागो मैसेज तमाम दोबारा शेयर करे छो आए सोन जला भी मोहब्बतूँ तमाम जो लख लख थोड़ा तां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो कोन मुखे बुधाए जो। और ये हमारे साथ ही भाई मैं जो भी हूँ पर एक बात की हम यूजर हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम के, तो हमारे लिए सॉन्ग लगा दो, मास्टर मंजूर का सॉन्ग है खीरा जेड़ो अच्छो, ओके ये कमाल है डी स्किन ब्यूटी क्रीम का, थैंक्स शो एंजॉय कर रहे हैं भाऊ, बहुत शुक्रिया प्यारे भाऊ। और कहते हैं भाऊ थोड़ी हाजिर हाजिर

0: अच्छा गुलाम शबीर अबड़ो हमारे साथ कहते बाजी सिद्रा आपकी पहेली का जवाब है बिल्कुल सही जी बिल्कुल सही और कहते हैं अच्छा गुलाम हुसैन उमरानी का सॉन्ग सुनना चाहते हैं अच्छा मैं कोशिश क्या थी भाजला गानो हलाइंदा सी मीरपुर खास अब्दुल्ला महर कहती है अस्सलाम वालेकुम बाजी डी स्किन ब्यूटी क्रीम जबरदस्त है बहुत बढ़िया जी इस्तेमाल करते रहिए ऐसे ही मंजूर अली खास के लिए है झंडो मरी सी आप हमारा शो सुन रहे हैं क्या बात है मंजूर भाई आपको वेलकम हो गया ये लिखते हैं कि जिसने अदा सीख ली गम में मुस्कुराने की उसे क्या मिटाएगी गर्दिशे जमाने की ये पोएट्री आपके लिए थी भाऊ बहुत बढ़िया
1: जुल्फ़ दुल्हन ते जो केरे चली

0: चाल ॾिसी
1: बिल्कुल जी जी स्किन ब्यूटी क्रीम लॻाईंदा त दीवाना थींदा के फज़ली हमारे साथ फज़ली के दी अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम गुड आफ्टरनून माय स्वीट बेस्ट आरजे शहज़ादी सिस्टर सिद्रा मुस्कान कैसी हो जानू मीठी हूं तुम बताओ कैसी हो तेरे सलाम टू माय स्वीट हार्ट मॉम और कायनात और सब स्वीट सिस्टर्स को ओके जी ओके और ये भाई साहब लिखते हैं हेलो सिद्रा आपी हेलो टू यू और कामरान भाई हमारे साथ हैं कामरान भाई आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम सुन रहे हैं एंजॉय कर रहे हैं जी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कीजिएगा और इन्होंने लिखा है अच्छा मुनव्वर अली मुगल भाई हमारे साथ ही मीरपुर खास से कहते हैं आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है आपकी तरह ये जो आगे आपने लिखा ना ये बहुत बड़ी बात है ये बस आप भाइयों की मोहब्बतें के मुझे इस काबिल समझते हैं वरना तो असा इन काबिल का थे बाबा मौजूद है हेलो सिद्रा आपी में जेबुन निसा आंसर आपने दिया है बहुत बढ़िया जी बहुत बढ़िया आपको लास्ट में बताया जाएगा कि आपका जवाब सही था या गलत था ठीक है जेबुन निसा बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ इरम कहती हैं प्यारी दिलबर दोस्त नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है आपकी तबीयत मुझे लग रहा है कि अभी तक ठीक नहीं हुई है तो बहुत शुक्रिया इरम आप हमारे साथ एंजॉय करें प्रोग्राम को और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करती रहिए

हिकड़े माण्हू खे ॻाल्हि न वणी शायदि ईअं न निदड़ी अच्छा शमन जे गाने जी जिन जिन फरमाइश कई न हीउ गानो हुननि सभिनी भाउनि खे डेडिकेट आहे निदड़ी कहती है कि उदास रह के लोग दुखी आत्मा बन जाते हैं और मैं चालाक बनती जा रही हूँ या तो भली गाल है ना।

ओके जी निजाम भट्टी भाई वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम और ऐसन कहते लिस्ट में अज थोड़ी जगह छड़े जा असा भी गानो खणी आया आयो बिल्कुल बिल्कुल तमाजो गानो हलान जी फुल कोशिश कंदा सी अखलाक भाई में सुन रहे हैं अखलाक भाई कहते नाइस यू थैंक यू वेरी मच प्यारे अखलाक भाई जान और चाचा कहते हैं अच्छा कहते हैं आपके शो को मैंने इंडिया में भी शेयर कर दिया बहुत अच्छा किया बहुत अच्छा किया।

अच्छा दर्द दिल आपने भी टॉपिक का जवाब दिया है, ठीक है स्वीटी। निदली कहती है कि मैंने ख्वाब में एक दोस्त की शादी देखी थी, तो इसका मतलब बताओ क्या सच में उसकी शादी होगी या और लेट शादी होगी उसकी? होने वाली है उसकी शादी, टेंशन ना ले। हाँ जी, लहे मुल्क तांबार, ये ना भाई, कुछ ख्वाब सच्चे होते हैं, तो जो भी सच्चे हो।

सिद्धार्थ लाके थे तेरे प्रोग्राम में नाचेंगे, नाचो नाचो। अच्छा निदड़ी, कौन सा गाना था उस टाइम? पता नहीं कौन सा गाना चल रहा था, बताओ मुझे तो, जरा नाम बताती हूँ तुम्हें। अच्छा नसीम भाई कहते कितने प्यार से चाहा जाए तो पत्थर भी अपने हो जाते हैं, ये मिट्टी से बने लोग ना जाने इतने मगरूर क्यों हो जाते हैं। वाह वाह, बख्त अली सियाल भाई आपको भी वेलकम हो गया, थैंक यू आप हमारे साथ। इंडी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कौन कौन कर रहा है?

हाँ टाइम बुधा चूं था बस पंद्रह में आयो ऐसा कहते हैं टाइम तुम्हें तो पता है इंतजार मौत बराबर रहा बाबा सही था चो और कहते हैं सॉन्ग का मास्टर मंजूर जो ऐसा यो गानो अगर इन प्रोग्राम में हली वो तो ठीक है न तो असं पंजी बजे वाले प्रोग्राम में सुकून असा बुधा सी सही आ अच्छा फहीम भाई कहते हैं भाऊ मैडम ने डी स्किन ब्यूटी क्रीम खरीदी है रात उसने फोटो निकाल कर भेजा था वाह सही वाह डी स्किन ब्यूटी क्रीम तो इस्तेमाल करो सब सोना सोना थी वेंदा

अच्छा फरवा तव्हांखे प्रोग्राम वणे थो थैंक यू सो मच तव्हां वैसे गाने जी फरमाइश कई छा मूंखे मिलियो त कोन तव्हांजो गानो ॾिसी वठूं था तव्हांजो गानो आहे त हलाए वठूं था एसन कंहिं ते असां दुकान वारे खे चूनो कीअं लॻाईंदा हूं ख़बर अथव चवंदा हूं इहा क्रीम रख हुन दुकान ते ॾिसी ॾिसूं न मिली त इहा पोइ वठंदासीं हा हा सही था चओ सही था चओ अच्छा लाड़काना में आज गर्मी कुछ बेहतर है हाँ कुछ बेहतरी अच्छी भैया

तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कबो कबो कबो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कबो कहाँ भी सब डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो बाबा। अच्छा फरवा की दिया भी सारे ख्वाब पूरी नहीं होते लेकिन कुछ तो होते हैं। अच्छा हथ में गुलाब वरी की अजो याद अच्छी वो चलें जी यहाँ पर टाइम हुआ है हम जरा शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जानिब जाते हैं वरना हंसा हंसा के मेरी हालत बुरी कर देंगे। तो यहाँ पर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक होंगे वापसी जल्दी आप लोगों के पास आते हैं। आपने कहीं नहीं जाना यहीं पर मौजूद रहिएगा मैं यूं जाकर यूं वापस आते हूँ। सो स्टे ट्यून्ड स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाइए और खूबसूरत हो जाइए।

खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम बी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं

0: गुर्दे की पथरी मसाने की पथरी जो बगैर ऑपरेशन के कामयाब इलाज किया वे तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे की खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन औरतुन में वजन जो न वधण उन सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज किया वे तो राबते लाए 0301-9196-851।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ। बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569।
2: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम 0300-002734। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 0301-3865453।
3: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चौक पर एतमाद, आईमा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी है। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर, फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी, आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राबते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120।
4: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है, सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
5: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार, सिर्फ बिंडीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जोशो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
6: अपना शहर अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

भी देखिए आप बात है, बहुत ही प्यारा सा गाना एंजॉय कर रहे हैं और साथ ही साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं। White Asian Day Skin Beauty Show स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है Day Skin Beauty Products के तावन से, और यहाँ पर Day Skin Beauty Products आपके खूबसूरती के लिए हैं जनाब। अगर आप भी Day Skin Beauty Products का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जल्दी से इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि कहीं देर ना हो जाए, सारे लोग खूबसूरत हो जाएं, बस आप ही पीछे रह जाए। तो जल्दी जल्दी से Day Skin Beauty क्रीम का इस्तेमाल करते रहिए, और Day Skin Beauty क्रीम आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल करा दी गई है, लेकिन फिर भी आप फर्ज कर लीजिए अगर आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर अभी तक अवेलेबल नहीं हुई है तो आपको जो पूरे प्रोग्राम में नंबर्स बता देना उनके ऊपर बस राब्ता कर लिया गया, या तो आप कॉल करेंगे या तो फिर आप मैसेज करेंगे, उन्हें बता दीजिए कि आप भी चाहते हैं कि अवेलेबल हो जाए हमारे एरिया में Day Skin Beauty क्रीम। या फिर ऐसा वाला सीन है कि Day Skin Beauty क्रीम तो मिलती है लेकिन Day Skin फेस वॉश नहीं अभी तक अवेलेबल हुआ, तो उसके लिए भी आप नंबर के ऊपर राता करके अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर Day Skin का फेस वॉश अवेलेबल कराइए, क्योंकि Day Skin Beauty क्रीम तो पहले से अवेलेबल हो चुकी थी लेकिन फेस वॉश अभी अवेलेबल कराना बाकी है आप लोगों ने। तो जल्दी जल्दी से अवेलेबल कराइए, खूबसूरत होते जाइए, खूबसूरती की दुनिया में कदम

बताओ कि जी फायजा के गाने की फरमाइश थी तो हमने ये वाला गाना आप लोगों के नाम कर दिया. और जी गाना एंजॉय कीजिए और साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप अभी अभी हमें सुनना स्टार्ट कर चुके तो आपको वेलकम इन खुशामदीद कहा जाता है. बिल्कुल जी आपकी मोहब्बतों समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया. और साथ ही साथ अगर आप खूबसूरती की बात कर रहे हैं या फिर खूबसूरत बनना चाहते हैं, हर किसी की ये ख्वाहिश होती है कि हम खूबसूरत बने, खूबसूरती की दुनिया में हमारा भी नाम हो जनाब, तो आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करके अपनी खूबसूरती में इजाफा ला सकते हैं. और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में ये चीज तो बिल्कुल आप जानते हैं कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ये एक मेडिकेटेड फार्मूले के साथ तैयार की गई प्रोडक्ट है. तो जो लोग ये भी चीज सोचते हैं कि भाई हमारी स्किन के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो चुकी है, हम कोई भी प्रोडक्ट नहीं लगा पाते, हमारी स्किन पे मसला हो जाता है, रंगत आपकी बहुत ज्यादा डल हो चुकी है या फिर आपके चेहरे पर बहुत कुछ ऐसा हो चुका है,

आप लाजमी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करके देखिए, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपके चेहरे को बिल्कुल खूबसूरत, हसीन और प्यारा प्यारा बनाने वाली है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज आपको बहुत ही अच्छा साबित कर देगा। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप मर्द हसरात हैं, खवातीन हर कोई यूज कर सकता है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ डी स्किन का फेस वॉश भी अवेलेबल है, तो आप दोनों चीजें साथ में परचेज कीजिएगा। यूज करते रहिए और जरा अपने चेहरे का ख्याल रखिए, और इसके साथ साथ नंबर्स के ऊपर रابطہ करते रहिए जो कि आप लोगों को पूरे प्रोग्राम में बताए जाते हैं। अच्छा, तो आप लोगों के मैसेजेस बिल्कुल रीड आउट रखे जाएंगे, आप लोगों के साथ बातें भी होती जा रही है। और अगर आप गाने भी सुनना चाहते हैं तो गानों की फरमाइशें थोड़ी वैसे कम ही रखा करें, और बाकी जिन लोगों के गाने आज के प्रोग्राम में रह जाएंगे तो हम 5 बजे वाले प्रोग्राम में सुन लेंगे या फिर कल सुन लेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा गाना हमने लिस्ट में लगा लिया है, जयपाल भाई जाने फरमाइश कर दी थी, हीर जड़ो अच्छो ही गानो उन्हें मानन की डेडिकेट है जेके डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो यूज कर पाया। सो अमां भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो यूज करो, सोना सोना थियो, खूबसूरती हासिल करो।

ओके जी, अनवर भाई हमें सुन रहे हैं, कहते हैं उस्ताद बुखारी तो में आहे नाज आहिन, तो में उहे नाज आहिन, तो में उहे अंदाज आहिन, जिन लाइ असांजो दिलियूं सदक ऐं न्याज आहिन, ज़ुल्फन खे न लोड इएं वाव में मिठा, केतिराई दिलनि जा हिते राज ऐं न्याज आहिन। वाह वाह वाह वाह, शायदि सही रीड कर ली मैंने। अच्छा, उन खां अलावा फ़हीम कहते भाऊ आपने खोला है क्या बात है जी, अच्छी बात है, चलिए अब दुकान खोलीजिए, डी स्किन ब्यूटी क्रीम जिसने मिलती हो। अच्छा, रमजान भाई हमें ज्वाइन कर चुके हैं, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम।

0: हां जी बिल्कुल बिल्कुल लाड़काणी वारे माण्हुनि जी त ॻाल्हि इहा लॻाए लाड़काणी में चवंदा आहिनि घणी सूं आहे उहो इन जे करे छो त लाड़काणी वारा माण्हू डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कंदा आहिनि अगरि तव्हां बि सुहिणा थियणु चाहियो था त तव्हां बि बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो यूज़ करे सघो था ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हांखे मुनासिब क़ीमतुनि में मिली रही आहे सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम मां फ़ाइदो वठो ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो यूज़ कयो डी स्किन ब्यूटी क्रीम सां अगरि तव्हांखे डी स्किन जो फेस वॉश बि मिली रहियो आहे डी स्किन जो फेस वॉश अगरि तव्हां इस्तेमालु करणु चाहियो था त उहो बि तव्हां करे सघो था पोस्ट हिन ताईं तव्हां लाइक ऐं शेयर नाहे कयो न जल्दी करे वठो बाबा टाइम असां वटि बचो वञी सफ़ा थोरो आहे सो हिते ही ओएसटी लॻायो आहे मूं
1: कसम से आँख न मिले गम से
0: और निदड़ी काफी दिनों के बाद हमारे प्रोग्राम में आई थी और ओएसटी की फरमाइश कर दी हम फरमाइश पूरी ना करें तो जरा मजा नहीं आता सो ये निदड़ी को डेडिकेट जाता है।

बाज़ुकात इंसान किसी दूसरे से इसलिए दूर नहीं होता कि वो उसे सजा दे या अपनी अहमियत का एहसास दिलाए, बल्कि इसलिए दूर होता है क्योंकि वो उसे और उसके फजूल रवैयों को एक सबक समझ चुका होता है। जब इंसान बार बार करीबी रिश्ते में तकलीफ पाता है, बेकदरी पाता है या मायूसी महसूस करता है, तो आखिरकार एक वक्त ऐसा भी आता है कि वो खामोशी से खुद को पीछे हटा लेता है। ये दूरी इंतकाम नहीं होती बल्कि अपने दिल को सुकून देना होता है। कुछ करीबी लोग भी हमें ये सिखा देते हैं कि अब आपने तवक्कात इंतहाई कम रखनी है और ऐसे लोगों से फासला रखना है जो दिल को बार बार जख्मी करे। यानी बाज़ुकात दूरी किसी को बदलने के लिए नहीं बल्कि खुद को संभालने के लिए अख्तियार की जाती है।

क्या बात है जी, बहुत ही खूबसूरत सा गाना। हाँ, कुछ गाने ऐसे होते हैं चाहे आप ड्रामा देखें या ना देखें, लेकिन गाना हुआ आपको अच्छा लगता है। ये गाना भी उन गानों में से है। बहुत ही खूबसूरत सा ओएसटी लेके हमने एंजॉय किया, और साथ ही साथ अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया यूज करते रहिए, और अपने दोस्तों को जरा मशवरा दीजिए कि वो भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करते रहे। जयपाल भाई कहते कि भाऊ थोड़ा सॉन्ग सुनाया, थोड़ा थैंक्स, खुश रहे। पूरा गाना सुनना चाहते हैं तो 5 बजे वाले प्रोग्राम में फरमाइश किया करें। और हिदायतुल्लाह कहते हाय ये ड्रामा इतना अच्छा है, सच्ची बताए। किशोर भाई कहते अदा मूं वटि कोई मसलो ना है, बाकी अगर मुखे खबर पई हिता को मसलो आ त पो सुठो न थींदो, आ रोड ते वेही रहंदस पो जेको थियो। हिता कीअं मसलो थी सघे थो, ॿियनि माण्हुनि जा कॉमेंट अचनि था, तव्हां सां ई मतिलबु प्रॉब्लम हूंदो त इहो कीअं थो थी सघे। न अचनि त मतिलबु सफ़ा न अचनि, वरी प्रोग्राम जे लास्ट में अचनि कॉमेंट स्टार थियनि था, अलाए छा ॻाल्हि आहे। ॻाल्हि थोरी मतिलबु सम्झ में कोन पई अचे, मां ॾिसी वेठां थी, प्रॉब्लम सम्झ में अची वियो त थोरो हल करे वठूं था, ठीकु आहे।

जयपाल भाई, वो बस ऐसे ही हवा में तीर मारा था मैंने। अच्छा जिब्रान, वैसे 2-3 सालों के बाद आप प्रोग्राम में आए हैं, तो जाहिर सी बात है भाई इंसान थोड़ा चेंज हो जाता है ना। वैसा मेरा वाकई मूड नहीं रहा जैसा मेरा पहले हुआ करता था, तो बहुत सारी जिंदगी में तब्दीलियां आ जाती है, इंसान थोड़ा मैच्योर हो जाता है, संजीदा भी हो जाता है। मेरा वही वाला फेज चल रहा है। अब मुझे लगता है कि मैं कुछ थोड़ा सा अच्छा सोबर प्रोग्राम कर लेती हूँ, पहले पता नहीं क्या करती थी।

ओके जी, अली मोहम्मद भाई आपको वेलकम करते हैं, बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हैं। किशोर भाई कहते हैं कि अदा अगर एक रूम में 100 लोग बैठे हैं, उनमें से 99 लोग हमारे खिलाफ हो और एक मेरे साथ, मैं उस एक पर तवज्जो देता हूँ और ये बात रूम के लिए नहीं थी। आई नो किसके लिए थी। मैं भी दरअसल ऐसी ही हूँ। और ये आपकी बात आपको इसलिए सबसे अलग बनाती है। डी स्किन ब्यूटी क्रीम भी लगाएं, ठीक है, ताकि आप खूबसूरत भी हो जाए। मजीद खूबसूरत हो जाए। और कहते हैं कि आओ कमेंट कयान थो तो ऑप्शन अच्छे थो, तो फिलहाल हेते कमेंट न थो करे सकी। रियली यो मतलब लास्ट में मेरी ऑप्शन खुली बने थो, ये क्या जादू चल रहा है। अच्छा मोहम्मद अली भाई आपको भी वेलकम हो गया, आप हमारे साथ हैं। इसी के साथ आप लोगों से जी इजाजत लेते हैं क्योंकि हमारे जाने का वक्त आ चुका है। बड़ी तरह से मुलाकात पंच बची वाले प्रोग्रामों में थी। नहीं जयपाल भाई, वो बस आपके लिए तो बिल्कुल नहीं था। अब्बास मेहर बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ हैं। और कहते हैं जयपाल भाई अब नहीं कर सकते, मजाक मस्तियां किया करें, अच्छी बात है। पांजा पान भी तो आयो। चले सो वरी मिलू था तुम्हारे साथ। पांजो इलाही सरो ख्याल रखना, किसी का गलती थी उजे तो माजरत कयूं था। सुमुकलानी ना ही बाबू, सिन सलामत सा सलामत, पांजो ओ हिनो सरो ख्याल रखजो। सो अल्लाह हाफिज, बाय बाय, लव यू ऑल एंड टेक केयर।

ख़ात्मे सां तेल बि सस्तो थी वेंदो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त तहरान खे एटमी हथियारनि खां रोकण लाइ फ़ौजी कार्रवाई ज़रूरी हुई। ईरान ते बमबारी न कयो आहे त एटमी हथियार ठाहे वञे। सदर ट्रंप रूस ऐं ईरान ते पाबंदी मरण वारे बिलंस ते सहियूं बि करे छॾियूं। दुश्मन जे कंहिं बि ग़लतीअ जो ताक़त सां जवाब ॾियण लाइ 100% तयारु आहियूं। पासदारनि ऐं इनकलाब जे कमांडर मोहम्मद करमी चयो आहे त तहरान जारियत जो जवाब ॾियण जी भरपूर सलाहियत रखे थो। मुल्क दुश्मन अंसरनि खे मोह ॾियण लाइ 3 लख खां वधीक जानसरनि खे सरगर्म करे छॾियो आहे। ट्रंप CNN समेत मीडिया जे 3 इदारनि ते व्हाइट हाउस में दाख़िला ते पाबंदी। ख़बरू इदारे बि शामिल। समाजी वेबसाइट ते जारी कयल बयान में सदर ट्रंप चयो आहे त 3 इदारा लगातार इंतज़ामिया ख़िलाफ़ कूड़ियूं ऐं ख़्याली ख़बरूं हलाए रहिया आहिनि।

0: इंडस हाईवे ते वेन जो टक्कर लगण सबब अठन वरन जो निंगर मोहम्मद मुराद पुट गाणो हयाती विञाए वेठो।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: फॉरवर्ड कॉलेज ऑफ एजुकेशन खैरपुर में बीएड डेढ़ साल बीएड अढ़ाई साल जो दाखिलाऊं शुरू थी वयूं आहिन। जेकॾहिं तव्हां जो ख्वाब उस्ताद बनजण आहे त ही बेहतरीन मौक़ो हथन मां न वञायो। हाणे सिंध हुकूमत जे तालीमी शोबे सां लागापियल केतरिन ई नौकरियुनि लाइ बीएड डिग्री लाज़मी बणजी रही आहे। तंहिं करे अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे टीचिंग कैरियर खे मज़बूत बुनियाद ॾियो। सिंध जे कंहिं बि शहर या ज़िले सां वास्तो हुजे, तव्हां आसानी सां दाख़िला वठी सघो था। असां वटि मौजूद आहिनि एयर कंडीशन क्लास रूम्स, हाई स्पीड वाईफाई, तजुर्बेकार ऐं सीनियर फैकल्टी, मयारी तालीमी माहौल। खास ऑफर महदूद वक्त लाइ आहे, तंहिं करे अॼु ई राब्तो करियो। ऑनलाइन अप्लाई लाइ forwardcollege.pk, वधीक ॼाण लाइ 0304-282-7274। ऑफिस टाइम सुबुह 9 खां शाम 5 वॻे ताईं। एड्रेस गुलशन यासीन कॉलोनी, ताज पेट्रोलियम सर्विस जे साम्हूं, वापरा कॉलोनी, खैरपुर। अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे मुस्तक़बिल खे महफ़ूज़ बणायो ऐं हिकु कामयाब उस्ताद बणजो। पहिरियों कदम वधायो।
3: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे, झुर्रियां और कील माह से फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम, हर अच्छे कॉस्मेटिक जनरल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर, 03000-3105-109, 03000-3105-109।
4: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है। सिर्फ 2 मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन 2 ममालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के 2 कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
2: मेहराबपुर ऐं भरपासे जी अवाम लाइ खुश खबरी, पेट्रोल जे खर्च मां जान छॾायो ऐं रोज जे खर्च खां बचो। A1 आटोज पुराणी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहराबपुर तां सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक खरीद करियो। स्पेयर पार्ट्स ऐं माहिर मकेनिक जी सहूलियत पिण मौजूद आहे। उन सां गॾु सिंध शादी हाल सां गॾोगॾु A1 आटोज थरी रोड मेहराबपुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक रिक्शा, पेट्रोल लोडर, रक्षा ऐं CNG रिक्शा पिण दस्तियाब आहिनि। राब्ते लाइ मलिक खुशी मोहम्मद 0302-3295894 ऐं फेस मोहम्मद पहियार 0300-311-8956। A1 आटोस मेहरापुर, नालो आहे एतमाद जो।
5: इरशाद आटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो। इरशाद आटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर, नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़ररु कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद आटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालानी रोड मेहरापुर, राब्ते जे लाइ 0320180003।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 03003385569।
6: माशाला फौजी पाइप फैक्ट्री, नर्स गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेहरापुर। असा वट जगह जो डारियो, जगह जा पावा आई पाइप, डेढ़ ब चार छह नव आई बारह इंच में प्लेन आई कॉलम में मौजूद आहिन। फौजी भाइरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी। राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 03014514656 आई तौकीर अहमद 03601623793।
2: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल, गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें। रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 03003385569।
7: अदा
8: वालेकुम अस्सलाम। अदा छो परेशान आई?
7: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
8: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
7: न? अदा
9: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जीए मेरापुर एफएम 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
7: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
8: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
7: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
9: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94, नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
8: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
10: 03013992836।
11: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी एफएम 94।

खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385 69।

वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301 91 896

0: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था, पर पोलियो इन्हन कदमन के रोके भी सके थो। इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ऐं पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो खां बचाओ जा ॿ कतरा ज़रूर पीआरियो, छो त इहे कतरा ॿारनि में मुदाफ़ती ताक़त खे वधाइनि था ऐं इन्हनि जे ख़्वाबनि खे उॾाम ॾियनि था। पोलियो मतलब ज़िंदगी भर जी माज़ूरी।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा?
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
3: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नर्थ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर। राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347।
5: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर, और मेहराबपुर की आवाज GA FM 94।

0: It's 4 p.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: शहरी जे मुलविस हुजण जो इनकशाफ क्वाट में दहशतगर्द हमले में अफगान शहरी जे मुलविस हुजण बाद अफगान तालिबान जो बिटो मयार बेनकाब क्वाट में मस्जिद ते आपघाती हमलो कंदा दहशतगर्द अफगानी शहरी निकतो मतीउला जे नाले सां सुञाणप थी वई बई बे बम्बार जी सुञाणप जो अमल जारी अफगान आपघाती बम्बार जी सुञाणप बाद साबित थी वियो त अफगान पाकिस्तान में दहशतगर्दी लाइ आहे एम के एम सां वाॻियल वफ़ाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल सूबनि जे क़याम बाबति कानून में तरमीम करण जो मुतालबो करे छॾियो मुस्तफ़ा कमाल चयो त असां इंतिज़ामी यूनिट जा हामी आहियूं इंतिज़ामी यूनिट जे क़याम खे लीड कंदड़ असांजो हीरो हूंदो गार गंद कंदड़ ॿुधी छॾ गारनि सां काफ़िला न आहिनि रुकबा असां कंहिं बे क़ौम ख़िलाफ़ न आहे ॻाल्हायो रुगो पीपल्स पार्टी जी ॻाल्हि कई आहे करप्शन कंदड़ बुज़दिल हूंदो

0: सरगरम करे छॾियो आहे। सिक्योरिटी फोर्सेस जूं बलोचिस्तान में कार्रवाइयूं, 11 दहशतगर्द मारिजी विया। सिक्योरिटी ज़रियनि आगीअ में फोर्सेस जी कार्रवाई दौरान 6 ऐं 5 गोर में 5 दहशतगर्दनि खे जनम भेड़ो कयो वियो। वफ़ाक़ी घरु वज़ीर मोहसिन नक़वी पारां फोर्सेस खे दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ कामयाब कार्रवाई ते भेटा पेश। वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह सां पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटीअ जे वफ़द जी मुलाक़ात। कराची, हैदराबाद ऐं सखर एयरपोर्ट जे रिथाइन ऐं एविग्रेशन क़याम जो जाइज़ो वरितो। वॾे वज़ीर पारां PA जे ज़मीन जी फरहमी ऐं तरक़ियाती मामलनि जी सहूलियत ॾियण जी हिदायत। जॾहिं इस्लामाबाद लाइ निकरंदासीं त हर सूरत में पहुचंदासीं पेट्रोल तां लेवीअ जे ख़ात्मे ताईं लांग मार्च ख़तमु न कंदासीं। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे जमायत इस्लामीअ जे अमीर हाफिज़ नईम चयो आहे त हुकुमरान करप्शन ऐं फुरलुट ख़तमु करण लाइ तयार न आहिनि। IMF रुगो बहानो आहे, ही अवाम खे रिलीफ ॾियण लाइ तयार न आहिनि। सिंध जे इम्कानी विरांगे ख़िलाफ़ कराचीअ जे सिटी कोर्ट में कराची बार जो आल सिंध लायर्स कन्वेंशन। आमिर नवाज़ वड़ाइच, अरशद शर, हसीब जमाली समेत सिंध जे मुख़्तलिफ़ ज़िले बार जा शरीफ़। बदीन बार जे वकील अॻवान चयो त सिंध जे माण्हुनि लाइ सिंध ज़मीन जो टुकड़ो न पर संदनि माउ आहे। सिंध जे माण्हुनि जे जज़्बनि ऐं अहसासनि सां न खेॾियो। वकील फिदा जामणे चयो त सिंध जो विरांगो कंहिं बि सूरत में क़बूल न आहे। विरांगे वारी साज़िश में मुलविस माण्हू गद्दार हूंदो। सिंध बार काउंसिल जे सॾु ते सिंध जे इम्कानी विरांगे ख़िलाफ़ वकीलनि जा मुख़्तलिफ़ शहरनि में मुज़ाहिरा। हैदराबाद, पुर ऐं रोहिड़ीअ में अदालती कार्रवाइयुनि जो बाइकाट ऐं मुज़ाहिरा। वकीलनि जो चवणु आहे त सिंध जो विरांगो कंहिं बि सूरत में क़बूल न आहे। साज़िश कंदड़नि खे मात ॾिनी वेंदी। सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में 2 ॼणा क़तल, 1 ॼणे जो क़तल जो शक ज़ाहिर। चक वेझो कार ऐं तकरार तां जतो जहिड़ो 1 ॼणो क़तल, औरत समेत 2 ॼणा ज़ख़्मी। घर पंहिंजा वारे कार ऐं तकरार तां जतोई बिरादरीअ जे ॿिनि धुरनि में जहिड़ो थियो। फायरिंग जे नतीजे में दो जतोई मारी वियो। टंडरो मोहम्मद खान में अदालती पेशीअ तां वापसी वेंदड़ नौजवान क़तल। करीमाबाद भरिसां हथियारबंदनि सामारो वासी अज़हर खोसो खे गोली हणी क़तल कयो। टर्रो आदम वेझो कुकड़ियुनि जे फार्म ते कमु कंदड़ पोरियत मुराद ख़ासि केली पुरसरार नमूने फोत थियो। फोतीअ जे भाउ चयो आहे त भाउ खे ज़हरीली शइ खाराए क़तल कयो वियो आहे। नओं दंबालो वेझो मलकाणी ऐं जरक्स ऐं बंगार शाख जे पूछण में पाणी खोट ख़िलाफ़ जो एहतजाज। आबादगारनि ॿिए ॾींहं बि मलकाणी शरीफ़ मेन बस स्टॉप ते एहतजाजी मुज़ाहिरो करे धरणो हयो। आबादगारनि पारां शाखनि जे पूछण ताईं पाणी पहुचाइण जो मुतालबो, एहतजाज जारी रखण जो चिता। सखर में JST जा पासिंग मार्क 55 मां घटाए 50 करण लाइ एहतजाज। टेस्ट में 50 खां 54 मार्कूं खणंदड़ उमेदवारनि पारां एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। उमेदवारनि चयो त टेस्ट में 5,000 खां वधीक उमेदवारनि 50 खां 54 मार्कूं खयूं आहिनि, पासिंग मार्क्स 50 कयूं वञनि। ऐं सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में रोड हादसनि जे नतीजे में 3 ॼणा हयाती विञाए वेठा। चक भरिसां सखर शिकारपुर रोड ते हादसे में ठुलवासी धनार चंदड़ उर्फ चन्नी बंगलाणी फोद। टालर जे टकर में 2 रिढूं बि मरी वियूं। बाद जे इलाइक़े लतीफ़ाबाद में 2 मोटरसाइकिल जे टकर में कराची वासण पीरसन औरत फोत। बख्शापुर भरिसां इंडस हाईवे ते वेन जो टकर लॻण सबबि 8 वरनि जो नींगर मोहम्मद मुराद पुट ॻाइणो हयाती विञाए वेठो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।

0: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था, पर पोलियो इनन कदमन के रोके भी सके थो। इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ऐं पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो खां बचाव जा ॿ कतरा ज़रूर पीआरियो, छो त इहे कतरा ॿारनि में मुदाफ़ती ताक़त खे वधाइनि था ऐं इन्हनि जे ख़्वाबनि खे उॾाम ॾियनि था। पोलियो मतलब ज़िंदगी भर जी माज़ूरी।
1: हर नज़र आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे झुर्रियां और कील मुहासे फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइश देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम, हर अच्छे कॉस्मेटिक जनरल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर, 03000 3105109, 03000 3105109।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो, इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर। नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर, राब्ते जे लाइ 03201800003।
3: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ, महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 03000338569। खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त, बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 03000338569।
4: अदा
5: वालेकुम असलाम। अदा छो परेशान आई?
4: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
5: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई?
4: न अदा
6: यार, आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराने ते दिल्ली न थी चवे।
4: मुझे दुकान जी बेट हलंदी?
5: हाँ दा, कारोबारी इश्तेहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
4: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
6: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
5: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी,
7: 03013992836।
6: मोहम्मद उमेर गोरी, 03019155724।
8: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

0: मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी माहिरे अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-851
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टैचिंग मशीन जे जरिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120
2: खुशखबरी क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं अब फिक्र छोड़िए शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड PRP ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
3: सोनी अज त ॾाढी खुश थी लॻे
4: हा साईं ॻाल्हि बि अहिड़ी आहे
3: भला मूंखे बि ॿुधाए कहिड़ी ॻाल्हि आहे
4: चाचे जुम्मन जी खुशहाली जो राज ख़बर पियो आहे
3: छा
4: उहे पंहिंजे ढोरनि खे जी जान सखर चारो मसालो पिया खाराइनि हीअ चारो ढोरनि जो हाज़मो दुरुस्त करे थो ढोर सिहतमंद थियनि था गोश्त सां गॾो गॾु खीर बि वधे थो
3: वाह सोनी वाह वाह जी ॻाल्हि ॿुधाई पर किथे मिलंदो इहो जी जान सखर चारो मसालो
4: साईं रेडीअ ते था ॿुधाइनि ॿुध अची वठी अच
3: मां हाणे ई थो वञा त जीअं असीं बि खीर वधायूं ऐं नोट कमायूं
4: हा साईं हा
1: जी जान चारो मसालो हर वेझे पंसार स्टोर ऐं जानवरनि जे डॉक्टर खां नालो वठी ख़रीद करियो
5: धर माशुम वरकोटी वरकोटी कदमुना दयो निवी दुनिया पलो रवानवी खुद पोलियो रंस दा कदमुनो द्रवले हुंशी نپدی وجہ دا پولیو دا ہر مهم پا محال دا پولیو ٹیم دا دروازی ٹکولو جواب ورکوی او خپل ماشومانو تا دا پولیو دا مخنیوی دو ساسکی ورکول مهی روی زکا چه هم دا ساسکی دا ماشومانو دا بدن دفاعی تا کزیاتوی او دا حغی دا خوبون والوت وزاری مومی پولیو یعنی مستقل مازوری
6: خوبصورتی کا اصل راز صرف डी स्किन ब्यूटी क्रीम इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर दिन का शो
7: अस्सलाम वालेकुम अदा
8: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
7: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
8: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
7: न अदा
9: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
7: मुझे दुकान जी बेड हरंदी
8: हां दा कारोबारी इश्तिहारत आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी जल्दी आए
7: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
9: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347
3: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज़ GA FM 94

0: It's 4:45 PM. This time check is brought to you by
1: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: दुनिया के ज्यादातर मुमालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है. सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो मुमालिक में शामिल है. अब जिम्मेदारी हम सब की है. हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं. पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी.
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो. डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते.
4: हर बार जा नंदड़ा कदम एक नई दुनिया दा वधन था, पर पोलियो इनन कदमन के रोके भी सके थो. इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ऐं पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो खां बचाव जा ॿ कतरा ज़रूर पीआरियो. छो त इहे कतरा ॿारनि में मुदाफ़ती ताक़त खे वधाइनि था ऐं इन्हनि जे ख़्वाबनि खे उॾाम ॾियनि था. पोलियो मतलब ज़िंदगी भर जी माज़ूरी.
5: मेहराबपुर के हो तो आवाज़ भी मेहराबपुर की है. सुनते रहो GFM 94.

0: It's 5 p.m. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: कार्रवाई दौरान मजमू तौर ते अठ दहशतगर्दन के मारे वो कमांडोज ए बम डिस्पोजल स्क्वाड इलाके के क्लियर करार दई छो ऑपरेशन की निगरानी जनरल ऑफिसर कमांडेंट स्क्वाड कई खैबर पख्तूनख्वा के इलाके क्वाट में थियल दहशतगर्द हमले में अफगान सरजमीन ए शहर के मुलविस होने जो इंकशाफ क्वाट में दहशतगर्द हमले में अफगान शहरी के मुलविस होने बाद अफगान तालिबान जो मिटो मयार बेनकाब क्वाट में मस्जिद से आपघाती हमलों कंदा दहशतगर्द अफगानी शहरी निकतो मतीउल्लाह के नाले से सुणप थी वही बई बे बम्बार की सुणप जो अमल जारी अफगान आपघाती बम्बार की सुणप बाद साबित थी वो अफगान सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी ला इस्तेमाल थी रही है एम के एम से वागियल वफाकी वजीर मुस्तफा कमाल सूबन के क्याम बाबत कानून में तरमीम कर मुस्तफा कमाल असा इंतजामी यूनिट्स जहा हामी आयो इंतजामी यूनिट्स के क्याम के लीड कंदड़ असो हीरो हों गार गंद कंदड़ बुधी छड़ गारिन सा काफिला ना रुकबा अस कें बे कौम खिलाफ ना गलाय रुगो पीपुल्स पार्टी की गाल कई है करप्शन कंदड़ बुजदिल हों कदें भी पांजी जान ना डींद अस कुर्बानी दियण लाय तैयार आयो ईरान से जंग जल्द खत्म थी वेंदी जंग के खात्मे से तेल भी सस्तो थी वेंदो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप है तेहरान के एटमी हथियार का रोकने लाय फौजी कार्रवाई जरूरी हुई ईरान से बमबारी न कई हुआ तो एटमी हथियार ठाए वनी सदर ट्रंप रूस और ईरान से पाबंदी मरण वाले बिलन से सयू भी करे छो दुश्मन के कें भी गलती जो ताकत से जवाब देने लाय सौ सैकड़ों तैयार आयो पासदार इनकलाब के कमांडर मोहम्मद करमी है तहरान जारियत जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखे तो

0: कॉलम में मौजूद आहिन। फौजी बहरन लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद।

0: इरशाद ऑटो से पैंटी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जे हमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाए 0320180003
1: जहां उम्मीद के दिए जलते हैं
2: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकाद मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नताइज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें मजीद रابطے के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम 0300002724 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 0301386543
3: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
4: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई
3: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
4: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300320437202
5: खुशखबरी लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे बाजू टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट बार बार वेक्स और शेविंग से निजात नरम साफ और खूबसूरत जिल्द कम वक्त बेहतरीन नतायज अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहरापुर 0300338569
6: अस्सलाम वालेकुम अदा
7: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
6: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
7: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
6: न अदा
3: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर एफएम 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
6: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
7: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
6: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
3: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज़द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
7: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
8: 0301399-2836
9: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज जीए एफएम 94

0: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है। सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
1: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडिएंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां। हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट, हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरा पर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम बी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं सूम

0: वठनी पवंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: खूबसूरती का असल राज सिर्फ दी स्किन ब्यूटी क्रीम इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ 2 दिन में डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो दी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर दिन का शो
2: खुशखबरी क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं अब फिक्र छोड़िए शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
3: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एटमात अइमा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीया जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीया जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ते जिलाए आसिम हुसैन आराई
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफ एम 94

केपीए जे शहर कोहाट में दहशतगर्द हमले में मुलविस समूरा दहशतगर्द मारिजी विया। सिक्योरिटी फोर्सेस इलाइक़े में क्लियरेंस ऑपरेशन मुकमल करे वरतो। सिक्योरिटी ज़रिए मूजिब पुलिस लाइन में लिकल बिन आबगात बम्बारन के भी मारे वो है। कार्रवाई दौरान मजमू तौर से 8 दहशतगर्दन के मारे वो। कमांडोज ए बम डिस्पोजल स्क्वाड इलाके के क्लियर करार दई छो। ऑपरेशन की निगरानी जनरल ऑफिसर कमांडेंट कोहाट कई। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके कोहाट में थियल दहशतगर्द हमले में अफगान सरजमीन ए शहरन के मुलविस होने जो इंकशाफ। कोहाट में दहशतगर्द हमले में अफगान शहरी के मुलविस होने बाद अफगान तालिबान जो बिटो मयार बेनकाब। कोहाट में मस्जिद से आबगाती हमलो कंदा दहशतगर्द अफगानी शहरी निकतो मतीउल्लाह के नाले से सुणप थी वही। बई बे बम्बार की सुणप जो अमल जारी। अफगान आबगादी बम्बार की सुणप बाद साबित थी वो अफगान सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी ला इस्तेमाल थी रही है। एम के एम से वागियल वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल सूबन के क्याम बाबत कानून में तरमीम करण जो मुतालबो कर छो। मुस्तफ़ा कमाल असा इंतजामी यूनिट्स जहा हामी आयो। इंतजामी यूनिट्स के क्याम के लीड कंदड़ असो हीरो होंद। गार गंद कंदड़ बुधी छड़न। गारिन से काफिला ना रुकबा अस कें बे कौम खिलाफ ना गल रुगो पीपुल्स पार्टी की गाल कई है। करप्शन कंदड़ बुजदिल होंद है। कदें भी पांजी जान ना दीदो असा कुर्बानी देण लाय तैयार आयूं। ईरान से जंग जल्द खत्म थी वेंदी। जंग के खात्मे से तेल भी सस्तो थी वेंदो। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो आए ता तेहरान के एटमी हथियारन का रोकने लाय फौजी कार्रवाई जरूरी हुई। ईरान ते बमबारी न कई हुआ ता एटमी हथियार ठाए वनिया। सदर ट्रंप रूस ए ईरान ते पाबंदी मरण वाले बिलंस ते सयूं भी करे छड्यूं। दुश्मन के कें भी गलती जो ताकत से जवाब देने लाए 100% तैयार आयो। पासदार इनकलाब के कमांडर मोहम्मद करमी है तहरान जारियत जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखे तो। मुल्क दुश्मन अंसर के मोह देने लाए 3 लख का जानसर के सरगर्म कर छो है। सिक्योरिटी फोर्सेस जो बलोचिस्तान में कार्रवाई 11 दहशतगर्द मारिजी विया। सिक्योरिटी जरिए मूजिब चागी में फोर्सेस की कार्रवाई दौरान 6 ए पंजगोर में 5 दहशतगर्दन के जहनम भेड़ो कयो वयो। वफाकी घरू वजीर मोहसिन नकवी पारा फोर्सेस के दहशतगर्दन खिलाफ कामयाब कार्रवाई से भेटा पेश। वडे वजीर सैयद मुराद अली शाह से पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के वफद की मुलाकात। कराची हैदराबाद ए सखर एयरपोर्ट के रिथायन एविग्रेशन यूनिवर्सिटी के क्याम जो जायजो वरतो। वडे वजीर पारा पीए जमीन की फरहमी ए तरक्याती मामलों की।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे, झुर्रियां और कील माह से फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जनरल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर, 03000-3105-109, 03000-3105-109।
2: मेहरान आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
3: सरिया गार्डर टीए एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारियर दस्तियाब आई।
2: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
3: राब्ते लाए प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल, 03003204372-02424601100।
4: मालवन भारन लाए खुश खबरी, 50 सालन का आजमायल सखर वारन जो जीजान ढोर चारो मसालो, जानवरन में खीर ऐं गोश्त वधाए, अम्हां के खुशहाल बनाए, हर पंसार ऐं जानवरन जे डॉक्टरन वट दस्तियाब आहे।
5: दुनिया के ज्यादातर मुमालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है, सिर्फ 2 मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन 2 ममालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के 2 कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल मजूरी।
6: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो, इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, 9 मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर, फ्यूल एडजस्टमेंट, आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर, राब्ते जे लाए 03200180003।

ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।

0: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज़द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
1: राबते लाए हाकिम अली जिस कहानी
2: 03013992836
3: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी एफएम 94।

0: बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आए तुम सब खैर खैरियत से होंदा। मैं आवां जो मेज़बान एहसान अली सियाल। आवां सब बुधी रहे आयो GFM 94 जे लाइव स्टूडियो में प्रोग्राम सेहत जी गाल। प्रोग्राम सेहत जी गाल में असांजे स्टूडियो में मौजूद हुंदा आहिनि डॉक्टर मंजूर हुसैन महमूद साहब, जेके मुख्तलिफ़ बीमारियुनि बाबति ॼाण ॾींदा आहिनि। आया असांजे प्रोग्राम में लाइव कॉल ज़रिए भी शामिल थी सघो था। असांजे लाइव कॉल जो नंबर आहे 0301-9196-851। सभु खां पहिरियां त असां डॉक्टर साहब खे पंहिंजे प्रोग्राम में ख़ुश आमदी चवंदासीं। डॉक्टर साहब अस्सलामु अलैकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: डॉक्टर साहब कीअं आहियो? ठीकु आहियो? त वैसे ठीकु
1: आहे जी, साईं अलाह ताला जा एहसान।
0: डॉक्टर साहब, अॼु कहिड़े मौज़ू बाबति तव्हां ॼाण ॾींदा सर?
1: औज़ु बिल्लाहि मिन शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहिरियों त सभु तारीफ़ूं रब पाक जूं, जेको असांखे जारे थो, खाराए थो, रोज़ी ॾिए थो, ख़ुशी ॾिए थो, ऐं सभिनी ज़मीनी आसमानी आफ़तुनि खां महफ़ूज़ रखे थो। असांजो प्रोग्राम सिहत जी ॻाल्हि बर वक़्तु हिन टाइम ते नशर थींदो आहे, ऐं अवां सभिनी ॿुधंदड़नि जे लाइ हे ख़ासि स्पेशली प्रोग्राम मौजूदु हूंदो आहे अवां जी ॼाण जे लाइ। हिन में मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जे हवाले सां अवांखे ॼाण ॾिनी वेंदी आहे। हिन में मुख़्तलिफ़ टिप्स अव्हांखे ॿुधाया वेंदा आहिनि, देसी टोटका अव्हांखे ॿुधाया वेंदा आहिनि, जिन सां अलाह ताला जी महिरबानी सां हज़ारे अफ़रादनि खे फ़ाइदो पवंदो आहे। अव्हांखे ख़बर आहे त जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक अव्हांजे शहर मेहरापुर में कोटड़ी रोड ते साम्हूं वधण पोटा पेट्रोल पंप ते मौजूदु हूंदी आहे, जिते पाण 6 ॾींहं जेको आहे सो वेंदा आहियूं। जुमे जो ॾींहुं, छंछर जो ॾींहुं, आचर जो ॾींहुं, सूमर जो ॾींहुं अंगारो छुटी हूंदी आहे, बकाया वरी अरबा, ख़मीस ऐं जुमो। हिन में 3 ॾींहं असांजा स्पेशली चेकअप फीस फ्री रखियल हूंदा आहिनि। उहे जेके असांजा हज़रात जेके फीस अफोर्ड न करे सघंदा आहिनि, उन्हनि जे लाइ चेकअप फीस फ्री हूंदी आहे, दवा मरीज़ खे वठणी हूंदी आहे। उहे 3 ॾींहं हूंदा आहिनि, जुमे जो ॾींहुं, छंछर जो ॾींहुं ऐं आचर जो ॾींहुं। टाइमिंग अव्हांखे ख़बर आहे त सुबुह जो 11 बजे खां शाम जो 5 बजे ताईं टाइम नोट करे छॾींदा। सुबुह जो 11 बजे खां शाम जो 5 बजे ताईं ऐं ॾींहुं अव्हांखे नोट करायासीं 6 ॾींहं। अंगारे जो ॾींहुं छुटी हूंदो आहे, जंहिंमें 3 ॾींहं अव्हांखे ॿुधायोसीं, जुमे जो ॾींहुं, छंछर जो ॾींहुं, आचर जो ॾींहुं चेकअप फीस फ्री हूंदी आहे। पाण प्रोग्राम जे हवाले सां ॻाल्हि कयूं त प्रोग्राम में मुख़्तलिफ़ क़िस्मनि जी बीमारियुनि जे हवाले सां अव्हांखे ॼाण ॾिनी वेंदी आहे। असां वटि डेली जेको आहे सो तमामु घणनि बीमारियुनि जा पेशंट्स ईंदा आहिनि, पर जेके पेशंट्स करे करे कुझु ज़्यादा ईंदा आहिनि त सम्झंदा आहियूं त हीअ अॼुकल्ह बीमारी वधीक जेको आहे सो थी रही आहे। इन जे करे उन खे हाईलाइट करण जे लाइ उन मौज़ू ते जेको आहे सो ॻाल्हाईंदा आहियूं। जीअं अॼुकल्ह ट्रांसलेट्स अव्हांखे ख़बर आहे, हिकु या ॿिए 3 शख़्स खे गले जा गदूद थी वेंदा आहिनि, ट्रांसलेट्स जंहिंखे चइबो आहे, या सिंधी में जंहिंखे चऊं त कलियूं थी वेंदियूं आहिनि। ख़ासि करे इन जो शिकार नंढा ॿार जेको आहे सो ज़्यादा थींदा आहिनि। उहे नंढा ॿार बि छो थींदा आहिनि, उन जी वजह बि अव्हांखे ॿुधाईंदासीं। हिकु त ट्रांसलेट्स छा आहिनि, ई छा आहिनि, इन्हनि जो कहिड़ो कमु हूंदो आहे असांजे जिस्म में, ऐं उन्हनि खे जेकॾहिं वधी वञनि त उन्हनि खे छा करणु घुरिजे, ऐं उन खां पोइ उनखे कहिड़ी ट्रीटमेंट जेको आहे सो सही करे सघे थी। जी हा, बिल्कुलु। हिकु तव्हांखे इहा ख़बर हुजणु खपे त असांजे गले जे अंदरि 2 टिश्यूज़ हूंदा आहिनि, हिकिड़ो लेफ़्ट साइड, ॿियो राइट साइड्स, जेके सेल्स प्रोड्यूस कंदा आहिनि। ऐं उन्हनि सेल्स जो फंक्शन इहो हूंदो आहे त जेके बि ॿाहिरियां बैक्टीरियाज़ या वायरस हूंदा आहिनि, जेके असांजे खाधे जे रस्ते, मुंहुं जे रस्ते जेके अंदरि ईंदा आहिनि, उन्हनि खे हू उते रोके ऐं जेको आहे सो फायर करे छॾींदा आहिनि या फाइट कंदा आहिनि, ऐं पोइ उन्हनि खे उते मारे छॾींदा आहिनि। पोइ उहे जेको आहे सो गदूदनि जो कमु अव्हांखे इहो ॿुधायोसीं त उन जे करे उहे अंदरि न अची सघंदा आहिनि, ऐं पोइ जेको आहे सो पेशंट या जेको आम माण्हू हूंदो आहे उहो बिल्कुलु सही हूंदो आहे। पर कॾहिं कॾहिं ईअं थींदो आहे जॾहिं बार बार इहे बैक्टीरियाज़, इहे वायरस जॾहिं अंदरि अचण जी कोशिशि कंदा आहिनि।

डॉक्टर साहब, शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो टाइम थियो आहे त हाणे हलूं था शॉर्ट ब्रेक ब्रेक जी तरफ़। त गॾु गॾु रहिजो ऐं ॿुधंदा रहो GFM 94 मेरापुर।

0: फ्री हूँ है, बाकी दवा मरीज के स्टोर तो वी हूँ है। डॉक्टर साहब प्रोग्राम जी पेरिंग काल जी तरफ हलंदा सी
1: जी।
0: लगे तो कॉल ड्रॉप थी चुकी है। प्रोग्राम आए से अजी गाल असन स्टोर में मौजूद डॉक्टर मंजूर हुसैन महमूद साहब। एक बी कॉल जी तरफ हलंदा सी दिसों ता केरा लाइन ते मौजूद। अस्सलाम वालेकुम।
2: साईं वालेकुम अस्सलाम।
0: के रहे किथा खादा?
2: साईं मां मुजासर तो गलाया गुड साले सर से का मोजी घरवारी जा वातो डाडो पची तो पए आए पैर फड़न दादा दा।
0: अच्छा ओ डॉक्टर साहब के दिखा रहे हो सर बिल्कुल क्लिनिक वेजो आए तो आजे मेरा पर
2: साईं कुछ मशवरो जे जो मेहरबानी थी
0: मशवरो जरूर अमा के बताए तो डॉक्टर साहब लेकिन रूबरो दिखाड़ी दो तो वधिक बेहतर
3: जी सर। से बिल्कुल दोस्त के बताना से एक तो गाढ़ो मिर्च तरे तरल शे खटी शे वगैरह या बिल्कुल बंद कर छन चाय जो इस्तेमाल बिल्कुल घट कर छन उन खा पो दही में जो सो केलो मिलाए उन जो लेप जो सो यानी वात के लगाए तो वो भी काफ़ी फायदो पव उन स्पंगुर की दुही अवा के फर्स्ट एड जो सो दई सके फर्क पव उन जिम्मे थदी शे इस्तेमाल करण के लिए पपीते जो इस्तेमाल तमाम बेहतर हों उनो जे यानी छाला पैजी वन वात में या जो वात पची पव तो उनमें जो सो पपीतो तमाम सो मुफीद हों काफ़ी फ़ायदा पव स्पंगुर की दुही उनमें काफ़ी फ़ायदा खीर जो इस्तेमाल काफ़ी फ़ायदे में हों अलावा होम्योपैथिक में ट्रीटमेंट उन बेहतर होंगी है जैसे फर्स्ट एड वन परहेज कर इनशा तला काफ़ी फ़र्क पैजी न पे फ़र्क तो बिल्कुल दिखारे
0: प्रोग्राम आए सेहत की गाल असांजे स्टूडियो में मौजूद डॉक्टर मंजूर हुसैन महमूद साहब। प्रोग्राम में एक बी कॉल की तरफ हलंदासीं। अस्सलाम वालेकुम।
2: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम।
2: अदा मैं कोटली खाली ना जवाब को गलाया
0: जी। अदा छा पूछना चाहंदा डॉक्टर साहब का?
2: यार मुझे घरवारी के हां मैं सूर तो पए मन रोज पास ऊपर करना हूं।
0: अच्छा
3: बिल्कुल बारिन जिनो हया में सूर पवे तो सौंफ तमाम बेहतर हर खाधे का बाद में सौंफ जरूर चूसन सौंफ काफ़ी फायदा दींदा उन सौंफ जीरो इनो सो पानी में काढ़े अद चमची वो काढ़ो पींदा वो भी काफ़ी जो सो फायदो दींदा उनखा पो दिसन करे तकलीफ़ थे थी काकड़ी शे खाण में तकलीफ़ ज़्यादा थे थी तो वह शे बिल्कुल जी मिसाल तरल शे है चाय जो इस्तेमाल घणो है वही सागुई जी गाल बुधाई तो हेवी शे मानू खाईंदा या गाढ़ो मिर्च या चाय जो इस्तेमाल ज़्यादा या देग जो चावर तो उ शूँ जो बिल्कुल इस्तेमाल करो बिल्कुल बंद कर उनमें दवा जो सो होम्योपैथिक की बेहतर ट्रीट कही है जैसे फ़र्क न पे तो बिल्कुल दिखारे नंढो बार जो मथो पची पियो है या मलो है तो एक तो निम जहाँ पन पानी में काढ़े उन निम के पानी से वेझाण से जो निम भी तमाम एंटी बैक्टेरियल है एंटीबायोटिक है एंटी इन्फ्लेमेशन है वह काफ़ी जी है सो ये सब नाला जो बुदायासी मेडिकेटेड नाला हूँ जी अवे मिसाल तुम डिटोल इस्तेमाल कहो तो हि यानी डिटोल का कई गुना इन जहा फ़ायदा हूँ हिड़ी खालिशतन जड़ी बूटी है अल्लाह ताला इन सो तख्लीक है इनमें केमिकल ना है इन ज़्यादातर इस्तेमाल करण से जी भी जरासीम खत्म पाच भी खत्म थी वी है इस्तेमाल कर सको था एज अ फर्स्ट एड एज अ ट्रीटमेंट अव रूबरू दिखारे सको था बड़ी मेहरबानी।
0: प्रोग्राम आए सेहत की गाल असांजे स्टूडियो में मौजूद डॉक्टर मंजूर हुसैन महमूद साहब। आया असांजे प्रोग्राम में लाइव कॉल जरिए शामिल थी सको था। असांजे लाइव कॉल जो नंबर है 0301-9196-8151। डॉक्टर साहब हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर सूमर ते सुबह 11 का शाम 5 बजे तई जर्मन होम्योपैथी

क्लिनिक सामू बदन पोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी रोड मेरापुर में मरीजन जो इलाज कंदा आइन। ए नोट अंगारे जे डी डॉक्टर साहब जी क्लिनिक बंद होंदी आए एना में हफ्ते जा 3 दिन जुमो छंछर आचर चेकअप फीस बिल्कुल फ्री होंदी आए। डॉक्टर साहब मुख्तलिफ़ बीमारियों जहाँ माहिर डॉक्टर हैं जिनमें गुर्दे पित्ते मसाने की पथरी जो बगैर ऑपरेशन के कामयाब इलाज कंदा हैं। संदन जोड़न गोडन जो सूर कुनरक जो सूर नक कन गलो नज़लो निछू मथे जो सूर अध मथे जो सूर नज़र की कमजोरी कन जो वहन कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जहा मर्ज फालिज खंग टीबी मैदे जो सूर मैदे की अल्सर तिली जो वधण जिगर हेपेटाइटिस बी सी गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे की खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण औरतन ए मर्दन के पोशीदा बीमारियों जो कामयाब इलाज कंदा आएं। असांजे प्रोग्राम में लाइव कॉल जरिए भी शामिल थी सको था। असांजे लाइव कॉल जो नंबर है 0301 91 8051।

0: प्रोग्राम आए सेहत की गाल असाजे स्टूडियो में मौजूद डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमण साहब जी मुख्तलिफ बीमार बाबत अवे के जान दई रहा है। असाजे प्रोग्राम में लाइव कॉल जरिए शामिल थी सको था। असाजे लाइव कॉल जो नंबर है 0301-9196-851। डॉक्टर साहब हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर सूमर से सुबह 11 का शाम 5 वगे तई जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधनपोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी रोड मेरापुर में मरीजन जो इलाज कंदा आयन। नोट अंगारे जे डी डॉक्टर साहब जी क्लिनिक बंद हुंदी आए इन में हफ्ते जा 3 दिन जुमो छंछर आचर चेकअप फीस बिल्कुल फ्री हुंदी आए।
1: दवाऊं मरीज के वठणी पवंदी आहिनि,
0: बाकी दवा मरीज के स्टोर तां वठणी पवंदी आहे।

डॉक्टर साहब, मुख़्तलिफ़ बीमारनि जा माहिर डॉक्टर आहिनि जिन में गुर्दे पिते मसाने जी पथरी जो बग़ैर ऑपरेशन जे इलाज कंदा आहिनि। संदन, जोड़नि, गोॾनि जो सूर, कुनरक जो सूर, नक, कन, गलो, नज़लो, निछू, मथे जो सूर, अधु मथे जो सूर, नज़र जी कमज़ोरी, कन जो वहणु, कन जो सूर, घटि ॿुधण में अचणु, शुगर, ब्लड प्रेशर, दिलि जा मर्ज़, फालिज, खंघि, टीबी, मैदे जो सूर, मैदे जी अल्सर, तिली जो वधणु, जिगर, हेपेटाइटिस बी सी, गुर्दनि जो इन्फेक्शन, चेहरे जो रंगु सांवरो, चेहरे जी ख़ारिश, फट, फुरड़ियूं, ॿारनि में कद जो न वधणु, ऐं औरतुनि ऐं मर्दनि जे पोशीदा बीमारियुनि जो कामयाबु इलाजु कंदा आहिनि।

0: असांजे स्टूडियो में मौजूद डॉक्टर मंसूर हुसैन महमूद साहब प्रोग्राम आए सेहत जी गाल ऐं असांजे प्रोग्राम में लाइव कॉल ज़रिए बि शामिल थी सघो था। असांजे लाइव कॉल जो नंबर आहे 0301-2196-851।
1: बिल्कुल के दोस्त हूंदा आहिनि या हाणे बि हिकिड़ा पेशंट्स आहे उहे ॿुधाईंदा आहिनि त अव्हांजो नंबर जेको आहे सो जल्दी जल्दी में ॿुधायो वेंदो आहे, असांखे यादि न वेहंदो आहे, इन जे करे पाण अव्हांखे नंबर नोट कराईंदो हलां। 0301-2196-851 यानी 0301-2196-851 अव्हां यादि कजो, नोट करे छॾियो।
0: डॉक्टर साहब हिकु कॉल जी तरफ़ हलंदासीं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम
2: साईं। साईं वालेकुम अस्सलाम।
0: पहिरां भाउ कहिड़ा हालनि? ठीकु आहियो? तबियत ठीकु आहे?
2: अलहमदुल्ला। तव्हां ॿुधायो साईं, कीअं आहियो? ख़ुशि आहियो?
0: शुक्रु आहे अलहमदुल्ला। छा पुछणु चाहींदा डॉक्टर साहब खां? ऐं असांजो प्रोग्राम कीअं पियो लॻे?
2: तारीफ़ करायां ॻोठ कैंची सियाल खां, हुसैन बख़्श सियाल थो ॻाल्हायां।
0: जी जी सर,
1: माशाल्लाह।
0: असांजो प्रोग्राम कीअं पियो लॻे सर? फीडबैक ज़रूरु ॾींदा।
2: प्रोग्राम माशाल्लाह वेरी नाइस, ताज हले पियो, ॾाढो तमामु घणो बहितरीन सुठो आहे। नशरियात बि वीआई ते अचे पई ऐं अव्हांजो प्रोग्राम बि वंडरफुल, जेतिरी तारीफ़ कयो सां घटि आहे।
0: मोहबतूं साईं, मोहबतूं आहिनि।
1: इहो सभु कुझु अदा, वॾी महिरबानी तव्हांजे, इहो सभु कुझु तव्हांजे ॿुधण सां ई जेको आहे
2: सर। इहो माना असां डॉक्टर साहब खां पुछंदासीं त असां अलहमदुल्ला हू बहितर आहियूं, सही आहियूं, सिहतमंद आहियूं, खाइण पीअण असांजो बहितर
0: आहे।
2: पर आउं जॾहिं सुबुह जो 4 बजे निमाज़ लाइ उथंदो आहियां त उन वक़्तु मूंखे बेचैनी ऐं थोरो माना कमज़ोरी महसूसु थींदी आहे। इहो छा कारण आहे साईं जन असांखे ॾिसो?
0: बिल्कुलु डॉक्टर साहब अव्हांखे ॿुधाए थो, रेडियो ॿुधो।
1: शुगर त न आहे साईं तव्हांखे?
0: शुगर त न आहे डॉक्टर साहब पुछे पियो?
2: न न न बिल्कुलु, शुगर बी पी सभु कुझु ओके आहे, को मसलो न आहे, कुझु बि न आहे, भली इहो थोरो इशू आहे।
0: उमिरि घणी आहे?
2: वेहूं था 5 मिंट खट ते त पोइ सही थी था वञूं, वरी घुमो फिरो के उथण सां असांखे मसला पैदा थियनि।
0: सही सही। उमिरि घणी आहे दा?
2: उमिरि 45 ईयर साईं।
0: अच्छा, ठीकु आहे सर, ठीकु आहे। ॿुधाए थो डॉक्टर साहब,
2: अञा नौजवान आहियूं।
0: माशाल्लाह माशाल्लाह।
1: बिल्कुलु, जेको असां दिलि जवान आहे हूंदी आहे ऐं माण्हू केतिरो बि उमिरि जो थियो आहे, उहो बि 45 साल उमिरि जेको आहे सो बिल्कुलु नॉर्मल
0: हूंदी
1: आहे। अॼु खे ज़रूरु ॿुधाईंदासीं त हिकु त सुठी ॻाल्हि आहे, इन टाइम ते जेको आहे सो उथणु अलाह ताला खे ज़रूरु यादि कंदा कयो। तजुद जो टाइम आहे, तजुद पढ़ंदा कयो, वज़ू में रहंदा कयो, इनशाला ताला अव्हांखे काफ़ी फ़र्क़ु पवंदो। दिलि खे सुकून ॾियण जे लाइ हिकु त दुरूद शरीफ़ तमामु जेको आहे सो उन खां वधीक का शइ न आहे। अव्हां दुरूद शरीफ़ पढ़ंदा अव्हांखे दिलि खे सुकून मिली वेंदो। सूरह रहमान अव्हां ॿुधंदा अव्हांखे सुकून अची वेंदो। ऐं अचूं था ट्रीटमेंट जे तरफ़, त अव्हांखे हिकिड़ो नंढो नुस्ख़ो ॿुधाए छॾियो, काफ़ी अव्हांखे दिलि खे सुकून सां सुकून बि मिलंदो ऐं फ़रहत बि थींदी ऐं चकर बि अव्हांजा ख़तमु थी वेंदा। हिकु त बादाम मिसरी ऐं सौंफ़, बादाम मिसरी सौंफ़ अधु भाउ वठी करे सफ़ूफ़ करे चमची हिकिड़ी सुबुह जो, चमची शाम जो ज़रूरु जेको आहे सो खाईंदा कयो, उहा अव्हांजे लाइ काफ़ी बहितरु आहे। जेकॾहिं थी सघे त माखी किथां हथु थी वञे त रोज़ाना राति जो हिकिड़ो चमच माखी जो खीर में मिलाए ऐं उहो इस्तेमालु करियो, उन सां बि अव्हांखे, या वरी खजूर अव्हांखे आसानी सां मिली वञनि थियूं, 5 दाणा खजूर जा खीर में ग्राइंड करे, ऐं जेकॾहिं माखी बि विझो त ठीकु आहे, वरना सिर्फ़ु खीर में ग्राइंड करे उहो जूस पीअंदो त उन सां बि अव्हां बिल्कुलु जेको आहे सो अञा नौजवान थी वेंदव। वॾी महिरबानी।
0: असांजे स्टूडियो में मौजूदु डॉक्टर मंसूर हुसैन महमूद साहब ऐं प्रोग्राम आहे सिहत जी ॻाल्हि। डॉक्टर साहब, असांजे अॼु जे प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजे पुॼाइण जे वञे पियो, आख़िर में अव्हां कहिड़ो पैगाम ॾियणु चाहींदा सर?
1: जी साईं, वॾी महिरबानी आहे, तमामु ख़ुशी थी अॼु जेको प्रोग्राम करे दोस्तनि असांखे ख़िदमत जो मौक़ो ॾिनो। ऐं ॿी ॻाल्हि इहा आहे त प्रोग्राम में मां हमेशह हिकिड़ो ई मैसेज ॾींदो आहियां त माउ पीउ जी ज़रूरु ख़िदमत कंदा करियो। माउ पीउ अनमोल शइ आहिनि, अव्हांखे जेको आहे सो माउ पीउ वरी न मिलंदा, उनजे ख़िदमत जो मौक़ो जेतिरो थी सघे उनखे ख़िदमत जो, उन्हनि जो ख़िदमत कयो। ऐं उनखां अलावा सुबुह जो उन्हनि खे रुगो तव्हां प्यार भरी निगाहुनि सां ॾिसंदव त उहो बि तव्हांखे तमामु घणो सवाबु मिलंदो आहे। ऐं पीउ माउ जी ख़िदमत करण सां अव्हांखे जेको आहे सो जहिड़े जन्नत में तव्हांखे ईअं सम्झो त ॼण टिकेट मिली वेंदी आहे। वॾी महिरबानी।
0: असांजे अॼोके प्रोग्राम सिहत जी ॻाल्हि जो वक़्तु पंहिंजे पुॼाणी ते पहुतो। दुआ आहे त अल्लाह पाक तव्हां सभिनी खे सदा तंदुरुस्त ऐं ख़ुशि रखे। ईंदड़ प्रोग्राम ताईं इजाज़त ॾींदा पंहिंजे मेज़बान एहसान अली सियाल खे। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह वाही।

वापरा कॉलोनी खैरपुर अॼु ई दाख़िला वठो पंहिंजे मुस्तक़बिल खे महफ़ूज़ बणायो ऐं हिकु कामयाब उस्ताद बणजण ॾांहुं पहिरियों क़दम वधायो। मेहराबपुर ऐं भरपासे जी आवाम लाइ ख़ुश ख़बरी, पेट्रोल जे ख़र्च मां जान छॾायो ऐं रोज़ जे ख़र्च खां बचो। A1 आटोज़ पुराणी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहराबपुर तां सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक ख़रीद करियो। स्पेयर पार्ट्स ऐं माहिर मकेनिक जी सहूलियत पिणु मौजूदु आहे। उन सां गॾु सिंध शादी हाल सां गॾोगॾु A1 आटोज़ थरी रोड मेहराबपुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक रिक्शा, पेट्रोल लोडर, रक्षा ऐं CNG रिक्शा पिणु दस्तियाब आहिनि। ते लाइ मलिक खुशी मोहम्मद 0302-3295894 ऐं फेस मोहम्मद पहियार 0300-311-8956। A1 आटोस मेहरापुर, नालो आहे एतमाद जो।

0: कॉलम में मौजूद आहिन। फौजी भाइरन लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राबते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राबते जे लाइ 0320-18-00-003।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 0300-335-69।
3: अस्सलाम वालेकुम अदा।
4: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
3: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
4: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
3: न अदा।
5: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
3: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
4: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
3: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
5: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
4: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
6: 0301-399-2836।
7: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

फॉरवर्ड कॉलेज ऑफ एजुकेशन खैरपुर में बीएड डेढ़ साल बीएड अढ़ाई साल जो दाखिलाऊं शुरू थी वयू आहिन। जेकॾहिं तव्हां जो ख्वाब उस्ताद बनजण आहे त ही बेहतरीन मौको हथन मां न वञायो। हाणे सिंध हुकूमत जे तालीमी शोबे सां लागापियल केतिरनि ई नौकरियुनि लाइ बीएड डिग्री लाज़मी बणजी रही आहे। तंहिं करे अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे टीचिंग कैरियर खे मज़बूत बुनियाद ॾियो। सिंध जे कंहिं बि शहर या ज़िले सां वास्तो हुजे, तव्हां आसानी सां दाख़िला वठी सघो था। असां वटि मौजूद आहिनि एयर कंडीशन क्लास रूम्स, हाई स्पीड वाईफाई, तजुर्बेकार ऐं सीनियर फैकल्टी, मयारी तालीमी माहौल। ख़ास ऑफर महदूद वक़्त लाइ आहे, तंहिं करे अॼु ई राबितो करियो। ऑनलाइन अप्लाई लाइ forwardcollege.pk वधीक ॼाण लाइ 0304-282-7274। ऑफिस टाइम सुबुह 9 खां शाम 5 वॻे ताईं। एड्रेस गुलशन यासीन कॉलोनी, ताज पेट्रोलियम सर्विस जे साम्हूं, वापरा कॉलोनी, खैरपुर। अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे मुस्तक़बिल खे महफ़ूज़ बणायो ऐं हिकु कामयाब उस्ताद बणजण ॾांहुं पहिरियों क़दम वधायो। मेहराबपुर ऐं भरपासे जी आवाम लाइ खुश ख़बरी, पेट्रोल जे ख़र्च मां जान छॾायो ऐं रोज़ जे ख़र्च खां बचो। A1 आटोज़ पुराणी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहराबपुर तां सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक ख़रीद करियो। स्पेयर पार्ट्स ऐं माहिर मकेनिक जी सहूलियत पिण मौजूद आहे। उन सां गॾु सिंध शादी हाल सां गॾोगॾु A1 आटोज़ थरी रोड मेहराबपुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक रिक्शा, पेट्रोल लोडर, रक्षा ऐं CNG रिक्शा पिण दस्तियाब आहिनि। ते लाइ मलिक खुशी मोहम्मद 0302-3295894 ऐं फेस मोहम्मद पहियार 0300-311-8956। A1 आटोस मेहराबपुर, नालो आहे एतमाद जो।

खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 03003385 69।

0: मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नजलो निचो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम

0: एलोवेरा फैन
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

0: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है। सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
1: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था, पर पोलियो इन्हन कदमन के रोके भी सके थो। इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ऐं पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो खां बचाव जा ॿ कतरा ज़रूर पीआरियो, छो त ये कतरा ॿारनि में मुदाफ़ती ताक़त खे वधाइनि था ऐं इन्हनि जे ख़्वाबनि खे उॾाम ॾियनि था। पोलियो मतलब ज़िंदगी भर जी माज़ूरी।
2: मेहराबपुर के हो तो आवाज़ भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो जी एफ एम 94।

मेहराबपुर ऐं भरपासे जी अवाम लाइ खुशखबरी, पेट्रोल जे खर्च मां जान छॾायो ऐं रोज जे खर्च खां बचो। A1 ऑटोस पुराणी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहराबपुर तां सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक खरीद करियो। स्पेयर पार्ट्स ऐं माहिर मैकेनिक जी सहूलियत पिण मौजूद आहे। उन सां गॾु सिंध शादी हाल सां गॾोगॾु A1 ऑटोस थरी रोड मेहराबपुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक रिक्शा, पेट्रोल लोडर, रिक्शा ऐं CNG रिक्शा पिण दस्तियाब आहिनि। राब्ते लाइ मलिक खुशी मोहम्मद 0302-3295894 ऐं फेस मोहम्मद पहियार 0300-311-8956। A1 ऑटोस मेहराबपुर, नालो आहे एतमाद जो। फॉरवर्ड कॉलेज ऑफ एजुकेशन खैरपुर में बीएड 1.5 साला ऐं बीएड 2.5 साला जूं दाखिलाऊं शुरू थी वयूं आहिनि। जेकॾहिं तव्हां जो ख़्वाब उस्ताद बणजण आहे त ही बहितरीन मौक़ो हथनि मां न वञायो। हाणे सिंध हुकूमत जे तालीमे शोबे सां लाॻापियल केतिरनि ई नौकरियुनि लाइ बीएड डिग्री लाज़मी बणजी रही आहे। तंहिं करे अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे टीचिंग कैरियर खे मज़बूत बुनियाद ॾियो। सिंध जे कंहिं बि शहर या ज़िले सां वास्तो हुजे, तव्हां आसानी सां दाख़िला वठी सघो था। असां वटि मौजूद आहिनि एयर कंडीशन क्लास रूम्स, हाई स्पीड वाईफाई, तजुर्बेकार ऐं सीनियर फैकल्टी, मयारी तालीमी माहौल। ख़ासि ऑफर महदूद वक़्त लाइ आहे, तंहिं करे अॼु ई राब्तो करियो। ऑनलाइन अप्लाई लाइ forwardcollege.pk, वधीक ॼाण लाइ 0304-282-7274। ऑफिस टाइम सुबुह 9 खां शाम 5 वॻे ताईं। एड्रेस गुलशन यासीन कॉलोनी, ताज पेट्रोलियम सर्विस जे साम्हूं, वापरा कॉलोनी, खैरपुर। अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे मुस्तक़बिल खे महफ़ूज़ बणायो ऐं हिकु कामयाब उस्ताद बणजण ॾांहुं पहिरियों क़दम वधायो।

Hello. Okay. मिल्क राइस ब्यूटी शो के साथ मैं हूं आबिद चौहान और आप सुन रहे हैं जी एफ एम 94 मेहरापुर।

मिल्क राइस की ब्यूटी की आपको प्रोडक्ट जो अवेलेबल मिलेंगी मैरापुर से, वो जनरल स्टोर से हैं, फैजान जनरल स्टोर मैरापुर, कामरान मोल जनरल स्टोर मैरापुर, हफीज जनरल स्टोर मैरापुर और कोरी जनरल स्टोर मैरापुर। और इसके अलावा अगर आपने हमारे प्रोडक्ट की कहीं पे भी अवेलेबिलिटी करवानी है तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे आपने कॉल करनी होगी, और हमारा हेल्पलाइन नंबर है 0300-310-5109। आप इस पे कॉल करके बात करेंगे मलिक जफर इकबाल साहब या एम सिद्दीक साहब से।

अच्छा जी, तो और अगर आपने प्रोग्राम में कॉल करनी है हमें, हमारा लाइव कॉलिंग नंबर है 03939319667। एक बार हमारा लाइव कॉलिंग नंबर दोबारा नोट कर लीजिएगा, 03939319667 पे कॉल करके आप हमसे बात कर सकते हैं और प्रोडक्ट के हवाले से मजीद जान सकते हैं।

हमारी ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ब्यूटी क्रीम, ब्यूटी सोप, एक्नी क्रीम इस्तेमाल के बाद आपने फीडबैक भी देना है, और उसके बाद आज हम आपको जो है कि बहुत सारे टिप्स देंगे ब्यूटी, और स्पेशली एक टिप और है इजीली जो आप सारे कर सकते हैं। मिल्क राइस की प्रोडक्ट्स आपको जिन मेडिकल जिन जनरल स्टोर से मिलेंगी वो है फैजान जनरल स्टोर मेहराबपुर, कामरान मुगल जनरल स्टोर मेहराबपुर, हाफिज जनरल स्टोर मेहराबपुर और कोरी जनरल स्टोर मेहराबपुर। और इसके अलावा अगर आपने कहीं पे भी प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी करवानी है तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल करेंगे 0300-310-5109, इस पे कॉल करके आपने बात करनी है मलिक जफर इकबाल या एम सिद्दीक साहब से।

हम एक म्यूजिकल ट्रैक की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन ट्रैक की तरफ बढ़ने से पहले आज की रिडल देंगे। रिडल मीन्स पहली गुजारत। जी तो बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरेस्टेड आज की रिडल है। पहली है, ऐसी वो कौन सी चीज है जो धोने से गंदी हो जाती है। वह कड़ी शे आहे जेका धोण सा मेरी थी वेंदी आहे। जी आहे ना तमाम पजलिंग। बिल्कुल परेशान थियण अवां जो हक आहे। त ये कड़ी शे थी सके थी जेका धोण सा मेरी थी वेंदी।

वेलकम बैक। जिन दोस्तों ने अभी एफएम ट्यून किया है उनको बताते चलें कि आप सुन रहे हैं मिल्क राइस ब्यूटी शो और मैं हूं आबिद चौहान। सॉन्ग की तरफ जाने से पहले हमने आपको एक रिडल दी थी पहली कि वो कौन सी चीज है जो धोने से गंदी हो जाती है। वह कड़ी शे आए जेका धोने सा गंदी थी वेंदी आए मेरी थी वेंदी आए कोड़ सारा असि टीम जा पैंजा दोस्त भी परेशान मुखे नजर अचन पे आए काफी मुखे टैक्स अचन पे आ ते एड़ी केड़ी शे थी सके थी बिल्कुल एड़ी शे आए जेका धोने सा मेरी थी।

रिडल भी हलंदी रहंदी, म्यूज़िक भी हलंदो रहंदो, उन सां गॾो गॾु हिकु असां जनरल स्टोर में इज़ाफ़ो करे रहिया आहियूं। जनरल स्टोर अव्हांजे शहर में इज़ाफ़ो थी वियो आहे, अवेलेबिलिटी थी वई आहे प्रोडक्ट जी अव्हांजी बेहद असरार खां पोइ। हींअर जेको आहे त मिल्क राइस ब्यूटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल आहिनि जावेद जनरल स्टोर मेहराबपुर ते बि। ऐं हिन सां गॾो गॾु ऑलरेडी सभ खां पहिरियां जिन जनरल स्टोर ते असांजी प्रोडक्ट अॻु में ई मौजूदु आहे उन्हनि में शामिल आहिनि फैज़ान जनरल स्टोर मेहराबपुर, कामरान मोगल जनरल स्टोर मेहराबपुर, हफीज़ जनरल स्टोर मेहराबपुर, कोरी जनरल स्टोर मेहराबपुर ऐं जावेद जनरल स्टोर मेहराबपुर।

ऐं अञा बि हिन खां अलावा जेकॾहिं अव्हां किथे बि अवेलेबिलिटी प्रोडक्ट जी कराइणु चाहियो था त डेफिनेटली अव्हां खे हेल्पलाइन नंबर ते कॉल करणी पवंदी ऐं असांजो हेल्पलाइन नंबर आहे 0300-310-5109 हिन ते कॉल करे अव्हां मलिक ज़फ़र इक़बाल साहबु ऐं एम सिद्दीक़ साहब सां ॻाल्हि ॿोल करे प्रोडक्ट जी अवेलेबिलिटी ऐं प्रोडक्ट जे बारे में वधीक ॼाण हासिलु करे सघो था।

जी ब्यूटी टिप्स में जेके अवां जे चेहरे ते निखार आणींदियूं आहिनि उन्हनि शयुनि में ऑलरेडी असां अॻु में अव्हां खे ॿुधाए चुका आहियूं त निंड हूअं बि सिहत लाइ बि तमामु बहितर आहे। निंड कंप्लीट करणु लाज़मी आहे।

कंटिनेंट सां गॾो गॾु अव्हां खे असां इहो बि ॿुधायोसीं त फ्रूट सब्जियूं फल फ्रूट मेवा इहे पिणु खाइबा उन सां गॾो गॾु खीर जो इस्तेमालु बि चहिरे ते रौनक आणींदो आहे। ऐं अॼोकी टिप तमामु ई बिल्कुलु बिना ख़र्च वारी, बिना ख़र्च त हर कोई इस्तेमालु कंदो, पर उन सां गॾो गॾु अव्हांखे जेको आहे मिल्क राइस ब्यूटी क्रीम ऐं ब्यूटी सोप ऐं एक्नी क्रीम जो इस्तेमालु करिणो लाज़मी पवंदो, छो त ख़ूबसूरती जो नज़र आहे भरोसा जो दिलि जीत ले, और हम दावा नहीं दलील देते हैं, केतिरियूं दलीलूं ॾींदासीं, अव्हां सिर्फ़ु मौक़ो ॾियो असांखे, असांजी प्रोडक्ट आज़मायो, आज़माइण शर्त आहे, उन खां पोइ असां अव्हांखे दलील ॾींदासीं त असांजी प्रोडक्ट केतिरी असरंदा।

ऐं असां सां ॻाल्हि ॿोल करण लाइ अव्हां असांजे लाइव कॉलिंग नंबर ते कॉल करे असांखे प्रोडक्ट जे बारे में बि ॼाण हासिल करे सघो था। ऐं रिडल मूं अव्हां खे ॿुधाई गुज़ारत त उहा कहिड़ी शइ आहे जेका धोइण सां गंदी थी वेंदी आहे, मेरी थी वेंदी आहे। ऐसी कौन सी चीज़ है जो धोने से गंदी हो जाती है।

जी त पोइ अॼोकी टिप आहे ॿुधाए छॾियूं. अॼोकी टिप आहे बिल्कुलु ही मुफ़्त जी मशवरे सां गॾो गॾु उहो इस्तेमालु साफ़ु सुथिरो पाणी. अव्हां खे पाणी त ॻोठनि में ऑलरेडी या भर पासे वारे शहरनि में ज़मीननि में ॿिन्हिनि में कुझु शहरनि जे विच में जेको आहे त पाणी खारो बि हूंदो आहे, पर पाणी मिठो वधि में वधि पाणीअ जो इस्तेमालु पाणी मुंहुं धोइण सां गॾो गॾु पाणी पीअण लाइ इस्तेमालु करण में उन ते बि चहिरे ते ग्लो ईंदी आहे. पर डेफिनेटली अव्हांखे यादि हुअणु घुरिजे त अव्हांखे ब्यूटी क्रीम, ब्यूटी सोप ऐं एक्नी क्रीम, मिल्क राइस जी प्रोडक्ट जो इस्तेमालु लाज़मी करणी आहे.

प्यार जो कंहिंसां पेच मां पाए वेठो आहे, पत्थर जे बुत खां आस लॻाए वेठो आहे। प्यार जो कंहिंसां पेच मां पाए वेठो आहे, पत्थर जे बुत खां आस लॻाए वेठो आहे। हू छा ॼाणे वाइदा कसमूं रीतूं रस्मूं, हू छा ॼाणे वाइदा कसमूं रीतूं रस्मूं, मां जंहिंजी ख़ातिर पाण भुलाए वेठो आहे। प्यार जो कंहिंसां पेच मां पाए वेठो आहे।

हमारा लाइव कॉलिंग नंबर है 0300 931 9667। इस पे कॉल करके आप प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ले सकते हैं, और इसके अलावा हमारी आज की रिडल पहेली गुजारत जो जवाब पंडई से गुजरा।

झड़ियालीअ में याद सारियूं अची वयूं, झड़ियालीअ में याद सारियूं अची वयूं, तो मुझे कयूं से ॻाल्हियूं मिठियूं मिठियूं, रिमझिम हुई बरसात खिमणियूं बि पए खिमियूं, तो मुझे कयूं से ॻाल्हियूं मिठियूं मिठियूं, तोहें त ॼण ख़िज़ा में बि मौसम बहार हुई, हर पासे प्यार जी पिरी प्यारा पुकार हुई, सखियूं पींघुन में गाए थे पए लुॾियूं, तो मुझे कयूं से ॻाल्हियूं मिठियूं मिठियूं, मूं तुंहिंजो नाओ हो लिखियो तो मुंहिंजो नाओ हो, साॻे ई वण ते आ मिठा अॼु बि लिखियलु उहो, छो यादूं दिलि तां तो मेटे छॾियूं, तो मुझे कयूं से ॻाल्हियूं मिठियूं मिठियूं, दर्जी विथुनि मां यादि कर हर हर मूरे ॾिसण, दर्जी विथुनि मां यादि कर हर हर मूरे ॾिसण, चाहत सां ॾिसी चपन में ई खिली पवण, आबिद आहिनि यादि घारियल सभई घड़ियूं, तो मुंहिंजे कयूं से ॻाल्हियूं मिठियूं मिठियूं, रिमझिम हुई बरसात खिमणियूं बि पए खिमियूं, तो मुंहिंजे कयूं से ॻाल्हियूं मिठियूं मिठियूं।

जी त दोस्तो मिल्क राइस जो प्रोडक्ट्स असां जो अवेलेबल आहिनि फैज़ान जनरल स्टोर महराबपुर, कामरान मुग़ल जनरल स्टोर महराबपुर, हफीज़ जनरल स्टोर महराबपुर, कोरी जनरल स्टोर महराबपुर ऐं जावेद जनरल स्टोर महराबपुर। इन खां अलावा जेकॾहिं अव्हां प्रोडक्ट जी अवेलेबिलिटी पंहिंजे वेझे कंहिं स्टोर ते चाहियो था त उन लाइ अव्हांखे असांजो हेल्पलाइन नंबर मिलाइणो पवंदो। असांजो हेल्पलाइन नंबर आहे 0300-310-5109। इन ते कॉल करे अव्हांखे ॻाल्हि करणी पवंदी मलिक ज़फ़र इक़बाल साहिब सां ऐं एम सिद्दीक़ साहिब सां।

जादूगर सुहिणा तुझी अखियन में जादू आ दिल मुझी धोखे सा कई तो तक काबू आ जादूगर सुहिणा तुझी अखियन में जादू आ दिल मुझी धोखे सा कई तो तक काबू आ हिंद सिंध सुहिणा तुझे हुस्न जी हाका सूरत अड़ी सुहणी ठाही रब पाका नरुगो सखर या शिकारपुर खैरपुर मोरो नवाब शाह दीवानो सजो दादू आ जादूगर सुहिणा तुझी अखियन में जादू आ।

GFM 94 ऐं ॿुधी रहिया आहियो मिल्क राइस ब्यूटी शो. अवां सभिनी सॼणनि जे नाओ शमर अली मीराली जी ख़ूबसूरत आवाज़ में ही ख़ूबसूरत ट्रैक. लेट्स एंजॉय द ट्रैक.

वेलकम बैक प्रोग्राम मिल्क राइसी ब्यूटी शो सां गॾु आउं आहियां आबिद चौहान ऐं आवां ॿुधी रहिया आहियो जी एफ एम 94 मैरापुर जी दोस्तों अवां जा खोड़ सारा टेक्स्ट मैसेजेस मौसूल थी रहिया आहिनि जंहिंजो बि राइट आंसर हूंदो उहो असां प्रोग्राम जे आख़िर में फॉर्मेट मुताबिक़ ॿुधाईंदासीं अॼोकी गुजारत आहे उहा कहिड़ी शइ आहे जेका धोइण सां मैरी थी वेंदी आहे

मिल्क राइस प्रोडक्ट्स में हमारे पास मिल्क राइस ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइस ब्यूटी सोप, मिल्क राइस एक्ने क्रीम और उसके अलावा मिल्क राइस विटामिन सी। और ये तमाम तर प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगी आपके अपने शहर फैजान जनरल स्टोर मैरापुर, कामरान जनरल स्टोर मैरापुर, हफीज जनरल स्टोर मैरापुर, कोरी जनरल स्टोर मैरापुर और जावेद जनरल स्टोर मैरापुर।

और इसके अलावा अगर आपने प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी और कहीं करवानी है अपने करीबी किसी स्टोर पे, तो उसके लिए आपको हमारा हेल्पलाइन नंबर डायल करना पड़ेगा, और हमारा हेल्पलाइन नंबर है 0300-310-5109। आपने बात करनी पड़ेगी मलिक जफर इकबाल साहब और एम सिद्दीक साहब से।

और अगर प्रोग्राम में आप लाइव का कॉल करना चाहते हैं, शामिल होना चाहते हैं कॉल के जरिए, तो आपको हमारा कॉलिंग नंबर मिलाना पड़ेगा। हमारा लाइव कॉलिंग नंबर है 03009319667।

बहुत ही दिलचस्प और परेशान करने वाली रिडल कि ऐसी कौन सी चीज है जो धोने से गंदी हो जाती है।

जी ब्यूटी टिप्स में हमने आपको दो चार ब्यूटी टिप्स बताई, उन पे अमल करें, आप अपने अंदर एक हैरान कुन तब्दीली महसूस करेंगे। यकीनन नींद पूरी करना वैसे भी सेहत के लिए फायदेमंद है, नींद के साथ आपने फ्रूट सब्जियां इस्तेमाल करनी है और उसके अलावा रात को अपनी रूटीन बना लें, रात के वक्त में आपने दूध लाजमी लेना है। और आज तो एक बहुत ही हमने ब्यूटी टिप में आपको बहुत ही इजी बता दिया, बहुत सारे लोग अपने कामकाज की वजह से मसरूफ रहने की वजह से यूजली बहुत कम पानी यूज़ करते हैं। पानी का कंप्लीट होना हमारे चेहरे के अंदर ग्लो लाता है, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करना हमारे चेहरे पे ग्लो लाता है।

0: अच्छा जी, प्रोग्राम में कॉल पे अचे असा कॉल शामिल कंदा से। अस्सलाम वालेकुम, केयर साईं किथां खां? हेलो, अस्सलाम वालेकुम, केयर साईं किथां खां? अवां जो आवाज तमाम घट पियो अचे जी। काइंडली एक भेरो बीहर रिपीट कजो। हेलो,
1: हेलो
0: जी जी जी, हाणे वाज़े ऐं क्लियर पियो अचे आवाज़। केर साईं किथां खां?
1: हा मिठा साईं, नवाबी संगत मां हुसैन बख्शियाल।
0: नवाबी संगत मां
1: हुसैन बख्शियाल।
0: हुसैन बख्शियाल साहब, प्रोग्राम में वेलकम, भलीकार, ख़ुश आमदीद पहिरां।
1: हा महिरबानी साईं, अव्हां खे दिलि जे गहरनि सां भलीकार, ऐं प्रोग्राम कयो पिया ऐं ॾाढो मज़ो अचे
0: पियो। वरी महिरबानी, वरी महिरबानी। असांजी प्रोडक्ट जे बारे में ॼाण हासिल कयो पिया, प्रोडक्ट आज़माई आहे कॾहिं?
1: हा बिल्कुलु सर, ॼाण हासिल कयूं था पिया ऐं बिल्कुलु इनशाला जल्दी जल्दी जेको असीं प्रिंट ख़रीद करे ऐं अव्हांखे फीडबैक ॾींदासीं।
0: असांखे बि ख़रीद करे ॾींदो, मूंखे बि।
1: हा बिल्कुलु, जेको फ़ाइदो पवंदो न त उहो अव्हांखे मालूमात ॾियणी पवंदी।
0: न, मालूमात ॾींदो, मां सम्झो मूंखे बि ख़रीद करे ॾींदो त मां बि इस्तेमालु कयां, तव्हां वठी ॾींदो। अच्छा ठीकु आहे, तव्हां पंहिंजे पाण ते इस्तेमालु कयो ऐं घर वारनि ते। ऐं शादी शुदा आहियो? अॼोकी जेका गुज़ारत आहे प्यारा, उहा का सम्झ में आई ॻाल्हि? ख़राब कोन थियो आहे, मूं ख़राब कोन थियो आहे, उहा धोइण सां मेरी थींदी आहे। आख़िर में जेको आहे असां हिन जो रिप्लाई ॾींदासीं, प्रोग्राम ॿुधाए रखो। पैगाम को, पैगाम को, नियापो को, सलाम को, दुआ को दोस्तनि खे?
1: नवाबी संगत मां कुझु दोस्त आहिनि
0: जी,
1: उन्हनि जा कुझु मां उन्हनि खे सलाम ॾियणु चाहियां थो। मुनीर अहमद फ़याल खे सलाम, ऐं अजीबला पुलपोटे खे, मंज़ूर हुसैन पुलपोटे खे, ऐं साईं सिकंदर शाह, रहमान शहबान खे सलाम, अदी शबीर ऐं मैडम सुदत खे सलाम, ऐं जेके दोस्त ॿाहिरि ॿुधनि था सभिनी खे सलाम।
0: वॾी महिरबानी, मुंहिंजे तरफ़ां बि अव्हां जी सॼी संगत खे सलाम। कुर्ब प्यारा, लव यू, लक लाइक।
1: थैंक यू, थैंक यू,
0: वॾी महिरबानी, ओके, अलाह।

जी त हुसैन बख्शियाल साहब जो रिप्लाई हुयो उहो अवां ॿुधो ऐं अवां जा कुझु टेक्स्ट मैसेज बि आयल आहिनि जिन जिन दोस्तनि जो जेको रिप्लाई आहे असां आख़िर में हुनजो राइट आंसर ॾींदासीं। अवां ॿुधी वठंदो त गुजारत कंहिं भॻी कंहिं कंहिं भॻी हा खोड़सारा बि वञी सघंदा उन ॻाल्हि खे असां ॿुधण खां पोइ डिस्क्लोज़ कोन था कयूं। लास्ट असांजो टाइम बचियो बि आहे 6 मिंट लॻभॻि। असां हिकिड़ो अवां लाइ ख़ूबसूरत ट्रैक बि प्ले कंदासीं। यादि रहे तव्हां प्रोग्राम ॿुधी रहिया आहियो मिल्क राइस ब्यूटी शो। असांजी ब्यूटी जूं ख़ूबसूरत प्रोडक्ट्स आहिनि ब्यूटी क्रीम, ब्यूटी सोप, एक्नी क्रीम। ख़ूबसूरती जो नज़र आहे भरोसा जो दिल जीत ले और हम दावा नहीं दलील देते हैं। असांजी प्रोडक्ट अवेलेबल आहिनि फैज़ान जनरल स्टोर मैरापुर, कामरान मुग़ल जनरल स्टोर मैरापुर, हफीज़ जनरल स्टोर मैरापुर, कोरी जनरल स्टोर मैरापुर ऐं जावेद जनरल स्टोर मैरापुर। इन खां अलावा जेकॾहिं अव्हां पंहिंजे कंहिं जनरल स्टोर ते प्रोडक्ट जी अवेलेबिलिटी कराइणु चाहियो था त उन लाइ अव्हांखे असांजी हेल्पलाइन ते कॉल करणी पवंदी। असांजो हेल्पलाइन नंबर आहे 0300-310-5109 ऐं असांजो लाइव कॉलिंग नंबर असां कॉल्स अटेंड कयोसीं। हींअर प्रोग्राम जो वक़्तु लॻभॻि पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो आहे सो असां अव्हां सरणनि लाइ आख़िरी ट्रैक प्ले कंदासीं। पर ट्रैक प्ले करण खां पहिरियों अव्हांखे रिडल यानी कि गुज़ारो जो इंतज़ारु हूंदो। जी हा बिल्कुलु, जिन दोस्तनि इहो रिप्लाई ॾिनो आहे त धोइण सां उहा कहिड़ी शइ आहे जेका मैरी थी वेंदी आहे। बिल्कुलु दोस्तो, धोइण सां फ़क़ति पाणी मेरो थींदो आहे, छाकाणि त जंहिं बि शइ ते इस्तेमालु कंदासीं त पाणी मेरो थी वेंदो, बाक़ी उहा शइ साफ़ थी वेंदी। वो चीज़ पाणी है जो धोने से मैला हो जाता है, छाकाणि त पाणी सां का बि शइ धोईंदासीं उहो पाण मेरो थी वेंदो पर ॿिए खे चमकाए छॾींदो। पंहिंजो खोड़ सारो ख़्यालु रखिजो ऐं हीउ लास्ट में म्यूज़िक ट्रैक अवां महबूबनि जे नाव मूंखे ॾींदा। इजाज़त, सिंध सलामत, साथ सलामत, अलाह निगेबान।

केपीजे शहर कुहाट में मस्जिद ते आपघाती हमलो कंदड़ दहशतगर्द अफगान शहरी निकतो बई आपघाती बमबारी सुणप न थी दहशतगर्द हमले सबब मुतासिर कुहाट वारे इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन भी मुकम्मल इलाके में इलाके के क्लियर किया

0: यमन के दखण इलाके में यमनी फौज जो हूसी बागन ते हमलो घट में घट 48 जणा मारजी वया केतरा जख्मी हुसैन पारां बे 31 यमनी फौजन के मारण जी दावा परदेही खबरू इदारे मूजिब यमनी सरकारी फौज जे हमले में 48 का वधिक हूसी मारजी वया आहिन जडे त हुसैन में 31 यमनी फौजन के बे मारण जी दावा कई आहे।
1: ईरान सां जंग जल्द खत्म थी वेंदी। जंग के खात्मे सां तेल भी सस्तो थी वेंदो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो है तेहरान के एटमी हथियारन का रोकण लाए फौजी कार्रवाई जरूरी हुई। ईरान ते बमबारी न कयूं हा त एटमी हथियार ठाहे वने हा। सदर ट्रंप रूस ए ईरान ते पाबंदियों मरण वारन बिल्स ते सहियूं भी करे छड्यूं।
0: नायब वजीर आजम इसहाक डार जो ईरानी परदेही वजीर अब्बास राखची से फोन ते राबतो। इसहाक डार अब्बास राखची खिते की सूरत हाल ए बेतरफन लागापन के ख्याल की डेवट कई। परदेही खाते मौजूद बिन्हीं अगवानन खिते की तब्दील थींदड़ सूरत हाल ते बे गालियों कयूं। राबते दौरान तवानाई वारा रस्ता महफूज बनाने ते बे गाल बोल। गडल कौमन के इजलास दौरान मुलाकात करण ते बे इतफाक। इसहाक डार जो चवण हो तकरार जो गालिन जरिए ही हल कढ़ी सके तो।
1: वफाकी घर वजीर मोहसिन नकवी जी सेनेट में अपोजिशन लीडर अलामा नासिर अब्बास से मुलाकात। मुख्तलिफ मामलों ते गालियों अलामा नासिर अब्बास से मुलाकात में का भी गुझी एजेंडा न हुई। बानी जे इलाज वारो मामलो है। एहतजाज जमहूरी आईनी हक है। रोकण वारो अमल मुनासिब ना है।

एम क्यू एम सां वाघियल वफ़ाक़ी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल सूबनि जी क़याम बाबति क़ानून में तरमीम करण जो मुतालबो करे छॾियो। मुस्तफ़ा कमाल जो चवणु हो त असां इंतिज़ामी यूनिट्स जा हामी आहियूं, इंतिज़ामी यूनिट्स जी क़याम खे लीड कंदड़ असांजो हीरो हूंदो। फारूक सतार जो चवणु हो त सिंध में 6 इंतिज़ामी यूनिट ठहण वारा आहिनि।

0: शादी हॉल सां गडो गड A1 आटोज थरी रोड मेहरापुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक इलेक्ट्रिक रिक्शा पेट्रोल लोडर रक्षा CNG रिक्शा पिण दस्तियाब आहिन। राबते लाए मलिक खुशी मोहम्मद 0302-3295894 फेस मोहम्मद पहियार 0300-311-8956। A1 आटोज मेहरापुर नालो आहे एतमाद जो।
1: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है। सिर्फ 2 मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन 2 ममालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के 2 कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
0: फॉरवर्ड कॉलेज ऑफ एजुकेशन खैरपुर में बीएड 1.5 साला बीएड 2.5 साला जो दाखलाऊं शुरू थी वयूं आहिन। जेकडे तवां जो ख्वाब उस्ताद बनजण आहे त ही बेहतरीन मौक्यो हथन मां न वणायो। हाणे सिंध हुकूमत जे तालीमी शोबे सां लागापियल केतरिन ई नौकरियुनि लाइ बीएड डिग्री लाज़मी बणजी रही आहे। तंहिं करे अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे टीचिंग कैरियर खे मज़बूत बुनियाद ॾियो। सिंध जे कंहिं बि शहर या ज़िले सां वास्तो हुजे, तव्हां आसानी सां दाख़िला वठी सघो था। असां वटि मौजूद आहिनि एयर कंडीशन क्लासरूम्स, हाई स्पीड वाईफाई, तजुर्बेकार सीनियर फैकल्टी, मयारी तालीमी माहौल। खास ऑफर महदूद वक्त लाए आहे, तंहिं करे अॼु ई राबतो करियो। ऑनलाइन अप्लाई लाइ forwardcollege.pk वधीक ॼाण लाइ 0304-282-7274। ऑफिस टाइम सुबुह 9 खां शाम 5 वॻे ताईं। एड्रेस गुलशन यासीन कॉलोनी, ताज पेट्रोलियम सर्विस जे साम्हूं, वापरा कॉलोनी, खैरपुर। अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे मुस्तक़बिल खे महफ़ूज़ बणायो ऐं हिकु कामयाब उस्ताद बणजो। पहिरियों कदम वधायो।
2: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ 2 दिन में डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
3: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर, और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

0: Us, a product by Biocon International Pakistan.
1: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे, झुर्रियां और की महासे फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर, 03000310509, 03000310509।
2: सुनिए,